उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

0: फायदे पे फायदा दे।
1: 101 FM।
2: पेपा कार्ड है
3: तो फायदा है।

0: आपके लिए FM 11 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक म्यूजिक
1: I love FM 101.
2: Coke Studio Season 10.

0: Freak Socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: खवातीन और हजरात, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कलाकार किसी को खो के लिखते हैं और जो गा नहीं सकते वो सुन के रो लेते हैं। तो आप सबकी खिदमत में पेश है किसी की गुजारिश, किसी की इल्तिजा, किसी की शिकायत। ज़रा तवज्जो फरमाएं।

तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।

digital perfection. 28 years of pure sound.

0: keep it locked, keep it loud.
1: FM 101. Hamisha Aapke Saath.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: जिदे हौसले बुलंद होन ओ कदी थक के नहीं बहंदा, ते जिदे हड्डा च मेहनत रची होवे ओ मंजिल ते पहुंच के रहंदा, ओ मंजिल ते पहुंच के रहंदा।
1: FM 101 आपके मन की आवाज, आपके दिल की धड़कन।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान मक्का मुश्तरक दिफाई मुआहदे के मुताबिक सऊदी अरब की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सलामती के तहफ्फुज़ के लिए अपने अज़्म पर मजबूती से कायम है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में एक इजलास की सदारत करते हुए सूबे में सलामती के मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया है। जबूती से यमन जाने वाली कश्ती उलटने से कम अज कम 139 तारीखें वतन हलाक हो गई है। और रात रावलपिंडी में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे बैन अल-अक़वामी T20 क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 82 रन से हरा दिया।
1: After this short commercial break, stay tuned.

0: दे पेपक आज ही अपने बैंक से बनवाए।
1: दिस इज FM 101.1
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Wired Radio. Today's best music. U101. Electric.
1: तेरा नाम लिया तो याद आई कहानी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हैदर और आप

चाहूं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा। मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह कमाल मेरा।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के मुताबिक सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ्फुज़ के लिए पुख्ता अज़्म जाहिर किया है। आलमी ज़राए ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के फजाई हमलों में दहशतगर्दों के ठिकानों की तबाही और हलाकतों की तस्दीक की है। भारतीय रियासत मणिपुर में बदअमनी बरकरार है, जहां मोदी हुकूमत अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.

All right, listeners, we're back again. It's 11:19 on the dial right now, और आप सुन रहे हैं Ladies Lounge. सफर में, रास्ते में जो लोग हमें सुन रहे हैं, मूव कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, आपसे कहेंगे हैव सेफ वे. दाएं बाएं आगे पीछे जहां तक आपकी नजर जाए घुमाइए और इस बात के इत्मीनान कर लीजिए कि आप ठीक जा रहे हैं और आपके आस पास के लोग भी ठीक जा रहे हैं. बीवेयर ऑफ यंग ड्राइवर्स. आजकल हमने ये स्पेशल कैंपेन स्टार्ट कर रखी है और हम इस पे बात करते रहेंगे क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे हादसात, ऐसे एक्सीडेंट्स जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं कि जिसमें यंग ड्राइवर्स जो हैं उनकी गलती की वजह से कोई भी सीनियर बंदा, कोई भी सीनियर ड्राइवर जो है वो सफ़र कर सकता है. सो एवरीवन जो कि रोड पे मौजूद है, आप बेशक पैदल चल रहे हैं, आपको जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनकी सेंस होनी चाहिए. बिकॉज जो लोग पैदल चल रहे होते हैं वो भी कभी कभार प्रॉब्लम का बाइस बन जाते हैं क्योंकि दे एक्चुअली डोंट नो कि कहाँ से रोड को क्रॉस करना है. और हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को यूज़ नहीं करते, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो नहीं करते हैं और कहीं से भी रोड क्रॉस करने लग जाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे रोड्स की स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड से भी ज़्यादा होती है और आपको आइडिया नहीं होता कौन सी गाड़ी फुल स्पीड में आ रही है. और गाड़ी वाला ठीक आ रहा है, उसको अलाउ है, लेकिन अचानक आपकी वजह से रुकना पड़ जाए किसी को, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. सो आई वुड से कि एवरी वन ऑफ अस जिसका वास्ता रोड से है उसको रोड सेंस भी होनी चाहिए. और ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है. आज मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ फिंगर टिप्स पे मौजूद है. सो यू कैन ईजी लर्न इट. अगर आप पहले इस पे नहीं ध्यान दे सके तो अभी आप दे सकते हैं क्योंकि आगाज़ कभी भी हो सकता है. अगर ज़िंदगी बाकी है तो फिर चांसेस भी बाकी हैं. facebook.com/fm101 लाहौर हमारा फेसबुक पेज एड्रेस, जहाँ पे आपको स्टेटस अपडेट मिलेगा हमारे आज के शो के हवाले से. लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. साथ ही साथ डायल कीजिए 04221100101 जहाँ पे आपकी ऑफर कॉल्स हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में ठीक 12 बजे तक. और जनाब लाइव कॉल्स का सिलसिला होगा 12 बजे के बाद. हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट ट्रैक, दिस टाइम आई एम गोना प्ले सादगी. तो हमारी जरा देखिए. डोंट गो एनीवेयर, जस्ट स्टिक अराउंड. दिस इज FM 101 रेडियो पाकिस्तान.

All right, listeners, we're back. बात करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से. और आज का जो टॉपिक है एक अच्छा सा, प्यारा सा, स्वीट सा, लाइट सा टॉपिक. और बाय द मंडे मेरी कोशिश ये होती है कि हम अच्छे से, प्यारे से, लाइट से टॉपिक पे बात करें, क्योंकि मंडे इटसेल्फ बहुत हैवी होता है दिमागों पे, जहनों पे, दिलों पे. और दोबारा से रूटीन को स्टार्ट करना बहुत सारे लोगों को बहुत भारी लग रहा होता है. तो जनाब, हमने आज सोचा कि जनाब कुछ लाइट से चिट चैट करते हैं हमेशा की तरह. तो आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं कि अगर आपकी जिंदगी, वी जस्ट होप कि इट्स गोइंग वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दुआएं हमारी आपके साथ, लेकिन आपकी जिंदगी और भी हसीन होती अगर क्या होता. आज आपने फिल करना है और हमें बताना है कि ऐसा क्या है आपको लगता है कि अगर वो आपको मिल जाता तो आपकी जिंदगी और भी हसीन हो जाती. सोचे सोचे, अच्छे से सोचे और सोच के बताएं. अब कोई ये ना कहे कि नहीं जनाब, हम बहुत मुतमईन है, हमारी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि कोई भी अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं होता. हमारी जिंदगी का निजाम ही है, अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है. हमें एक चीज मिल जाती है तो दूसरी की ख्वाहिश दिल में उठती है. और वो बकौल शायर है, जस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ. और फिर अभी मोहम्मद तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मैंने कहा देख लें आज आप हमारी पहले कॉलर बन गए, पहली कॉल आपके पिक हुई शो में. तो जनाब हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ढेर सारी दुआएं हमें दे करके गए हैं, बहुत शुक्रिया. और बहुत ही प्यारे से मैसेजेस भी उनकी कॉल में हमेशा मौजूद होते हैं. और उन्होंने कहा कि अगर जिंदगी हमारी आरजी है तो फिर मुश्किलात भी मुस्तकिल नहीं होती, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमें हमारे अमाल के हिसाब से नहीं, अपनी रहमतों के हिसाब से नवाजते हैं. तो कभी भी ये नहीं सोचना कि यार अब मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल है तो मेरी किसी गलती की वजह से होगी, मेरे किसी बदअमल की वजह से, मेरे किसी गुनाह की वजह से होगी. ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज है, वो नवाजने वाली है और वो नवाजती रहती है हमें उस वक्त भी जब हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे होते, ठीक है ना. सो जनाब, डू गुड एंड हैव फेथ इन अल्लाह, एवरीथिंग इज़ गोना बी जस्ट परफेक्ट इन अ व्हाइल. देर होती है, अंधेर नहीं होती. पेशेंस रखें, कीप वर्किंग फॉर द थिंग्स यू वॉन्ट इन योर लाइफ. ऐसा क्या है अगर आपकी जिंदगी में होता तो आपकी जिंदगी और भी हसीन हो जाती. अच्छे अच्छे जवाब लेकर आ रहे हैं आज आप लोगों ने हमारे पास. और फिर कॉल्स के लिए 04211100101 मिलाएंगे आप अपने फोन से. और फेसबुक पेज पे आप हमें ज्वाइन करना चाहें, facebook.com/fm101lahore फेसबुक पेज एड्रेस है, वहाँ पे आपको हमारा स्टेटस अपडेट मिलेगा जनाब. और उस स्टेटस पर आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बन सकते हैं हमारे शो का हिस्सा. 4471 इज ऑलवेज देयर. अपने फ़ोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए 101L, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और भेजिए उसको 4471 पर.

सो जनाब राइट नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग और नेक्स्ट सॉन्ग हम कौन सा प्ले करेंगे लें जनाब फिर आज वो सॉन्ग प्ले करते हैं जो मैंने बहुत प्ले किया अपने शोज में लेकिन जब तुमने कम बैक किया आई गेस नहीं प्ले कर पाए दिस वन इज माई पर्सनल फेवरेट आई जस्ट लव इट द एनर्जी ऑफ द सॉन्ग आप भी इंजॉय कीजिए साहिर अली बग्गा एंड आयमा बेग

जी तो जनाब लौट कर आ चुके हैं आपके साथ एक बार फिर से एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं लेडीज लाउंज, मुझे कहते हैं सातिया रफीक। आपको क्या कहते हैं जनाब, आप हमें बता रहे हैं 04221000101 पर। इट्स 11:40 ऑन द डायल राइट नाउ। और जनाब आप लोग हमें ये बता रहे हैं आज के इस शो में कि आपकी जिंदगी हसीन हो जाती अगर क्या होता, तो ये आपने मुझे बताना है। और फिर अभी हनीफ ड्राइवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमेशा से बहुत अच्छी सी हेल्दी सी गुफ्तगू करते हैं। मैंने जो ट्रैफिक पे बात की होती है उसको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं और अपनी भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी शेयर करते हैं। सो जनाब बहुत अच्छा लगता है। ट्रैफिक की बात करी, इन्हेंस कर रहे थे कि जब हम रूल्स को फॉलो नहीं करते और सडनली कहीं से भी रोड को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि गाड़ियों के लिए ब्रेक्स लगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी एवरेज स्पीड ज़्यादा होती है, रोड की एवरेज स्पीड ज़्यादा होती है। तो फिर इन द एंड क्या होता है कि या तो ब्रेक नहीं लगती और अगर लग जाती है तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि पीछे से आने वाली दो चार और गाड़ियाँ भी उसके अंदर लग जाती हैं। तो किसी एक की छोटी सी गलती किसी और कितने सारे लोगों के लिए जो है वो आप कह लें कि परेशानी का बायस बन जाती है। तो ऐसा मत किया करें, ना कराया करो, बिल्कुल ना कराया करो। और अगर ट्रैफिक स्लो चल रही है कहीं पे तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरी के साथ तीसरी लेन बना लें, तीसरी के साथ चौथी लेन बना लें और नीचे से क्रॉस करने की कोशिश करें या फुटपाथ के ऊपर गाड़ी चढ़ा दें। वेट करें, आपका थोड़ा सा वेट आपको लंबे वेट से बचा सकता है। तो जनाब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ हमारी जिंदगी में कि हमारी जिंदगी हसीन हो जाए। हनीफा से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी जिंदगियों को मुश्किल ही इतना बना लिया है, हमने ख्वाहिशात का दायरा वसी इतना कर दिया है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इतना इतना ऊपर ले गए हैं कि अब जिंदगी हसीन होना मुश्किल हो गया है। आप भी बजा कहते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, जिंदगी जितनी सादा थी हमने उसको और उतना ही मुश्किल बना दिया। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये ओवर द टाइम डेवलपमेंट के साथ आती है। हम शहरों की जिंदगी की बात करते हैं मोस्टली, जब भी बात होती है तो शहरों की ज़िंदगी की डिमांड ये है, शहरों की ज़िंदगी तेज़ इतना चलती है कि जब तक हम उसे भरपूर नहीं बनाएंगे आसाइशों से उसके साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। चलना भी नहीं, उसके साथ भागना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि भाग कर ही गुजारा होता है, चल के गुजारा नहीं होता। ठीक है ना। और बाकी हमारे टॉपिक की बात करें तो दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द मनी द थिंग्स, ये आपकी इनर खुशी भी हो सकती है, आपके आपका पीस भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सभी आसाइशें होंगी लेकिन ज़हनी सुकून ही नहीं होगा, जिसके पास रिश्ते नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे बैठ के बात करने के लिए, दिल की बात करने के लिए, एक कप चाय पीने के लिए जिसके पास कोई नहीं होगा। आप सोचें उसकी महरूमी का आलम सोचें। यू वॉन्ट बिलीव। मतलब हम लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उनको पैसों से तोलते हैं। नो डाउट कि पैसा बहुत बड़ी हकीकत है हमारी ज़िंदगी की, लेकिन आई हैव सीन सो मैनी पीपल जिनके पास पैसों का कोई मसला नहीं है लेकिन उनके पास और ऐसे इतने इतने दिल गिरफ्तार किस्म के मसले हैं ना कि आप परेशान हो जाते हैं उनकी हकीकत जानकर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में हों जिनके बारे में हम ख्वाहिश रखते हैं कि ऐसा होता तो हम ज़्यादा इन्जॉय करते, हम ज़्यादा खुश होते अपनी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत होती है ना। कोई एक अच्छा दोस्त होता जिसको जब जी चाहता कॉल करते, डिस्कस करते, शेयर करते। सो यू पीपल कीप ऑन थिंकिंग एंड कीप ऑन शेयरिंग, आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होता कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा हसीन होती।

लेकिन अब हम बस ये सोच रहे थे कि नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा प्ले करें. दिस टाइम आई एम गोना प्ले दिस वन. दिस वन इज बाय नन अदर देन आतिफ असलम. बहुत फेमस हुआ था जनाब ये पंजाबी लहजा आतिफ असलम का जब ये सॉन्ग आया था. एंड आई सीरियसली अडोर दिस ट्रैक. अब बीबी अ लॉट. Keep dialing 0422111001.

ले जनाब अलामे आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि आप थी किधर। मैं जनाब थोड़ा सा थक गई थी, मेरा लास्ट वीकेंड बहुत ज़्यादा बिजी था और उसके बाद मेरी एनर्जी एकदम से क्रैश कर गई थी। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक अ डे ऑफ कि मैं रेस्ट कर सकूँ थोड़ा सा, इसलिए जनाब मैं पिछले शो में नहीं आ सकी थी। मैंने कहा मैं ऑनर बता दूँ इससे पहले कि सारे फर्दन कॉल करके मेरी क्लास लें, दिस इज़ नॉट गुड सीरियसली। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक अ डे ऑफ कि मैं रेस्ट कर सकूँ थोड़ा सा, इसलिए जनाब मैं पिछले शो में नहीं आ सकी थी। मैंने कहा मैं ऑनर बता दूँ इससे पहले कि सारे फर्दन कॉल करके

पाती तो मेरी जिंदगी बहुत हसीन होती, लेकिन मैं वो नहीं कर सकी। सो अम्मारा, जो आप कर रही हैं यही सबसे बेहतरीन है, ठीक है ना? जस्टे क्या कहते हैं उसको, मजबूत रहें, यकीन रखें अल्लाह की ज़ात पे। अल्लाह ताला की जो तकसीम है, जो अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी प्लान की होती है, वो बेस्ट बेस्ट प्लान होता है। मैंने ये चीज़ ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में बहुत बार आजमाई है कि हम बहुत ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे ये मिल जाता, ये मिल जाता, ये मिल जाता, लेकिन ओवर द टाइम अल्लाह ताला आपको रियलाइज़ कराते हैं ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पे, कि अगर वो मिल जाता तो क्या होता, और अगर वो नहीं मिला तो उसकी मसलहत क्या थी। ये चीज़ें आपको समझ आती हैं अगर आप गौर करें अपनी ज़िंदगी में। और जनाब हनीफ भाई भी यही कह रहे थे, हमारा भी यही कह रही हैं कि उस्ताद जीरे की बर्थडे थी, हमने विश करना है तो उनको विश कर दें। हमारी तरफ से जनाब हैप्पी बर्थडे आपको, हमारी तरफ से भी FM 101 की पूरी टीम की जानिब से। हमारे प्यारे लिसनर्स का जो दिन होता है हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना जनाब? सो आप भी हमें बता सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होता तो आपकी ज़िंदगी भी हसीन होती, या कह लें कि अभी से भी ज़्यादा हसीन होती। हमारे बहुत सारे ख्वाब होते हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं ज़िंदगी में, गोल्स होते हैं जो हम सेट करते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, और उनको अचीव करके एक और ही तरह की, जो आप कह लें कि सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हमारी ज़ात के अंदर आती है। ये अलग बात है कि जब हम अचीव कर लेते हैं तो फिर वो वैल्यू नहीं रहती, बहुत कम होता है कि हम अपनी सक्सेस को अच्छे से इंजॉय करें। हम सक्सेस को इंजॉय भी नहीं करते और फिर एक नई धुन में चल पड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और जिनको अचीव करना भी इतना आसान नहीं होता, उन बहुत मेहनत से अचीव करते हैं। तो कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में जो आपको लगता है कि आपको वो मिल जाता तो आपकी ज़िंदगी और भी हसीन होती। ज़िंदगी हसीन है, ये हम सबको मान लेना चाहिए। और जब कभी लगे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है ज़िंदगी इंजॉय करने के लिए, तो ख़ुद को यकीन दिलाइए कि आपकी ज़िंदगी इस ज़मीन पर बसने वाले बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर है ना जी? इसके लिए आपको गौर करना पड़ेगा, अपने आसपास नज़र दौड़ानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा और लोगों को कि वो किस हालात में जी रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम बीमार हो ना, कभी अल्लाह ना करे, लेकिन कभी कभार जब तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ जाती है, जब हमें जाना पड़ता है क्लिनिक्स पे, हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ जाके आइडिया होता है कि यार हमारे आसपास लोग कितना सफ़र कर रहे होते हैं हेल्थ को लेके, हमें आइडिया भी नहीं होता। तो वहाँ पे अपना दुख छोटा लगने लग जाता है, लोगों के दुख बड़े लगने लग जाते हैं ना। तो इसी तरह से ज़िंदगी जो है हमारी पूरी की पूरी इसी तरह से चल रही होती है। हमें लग रहा होता है कि हम बहुत मुश्किल में हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा बहुत से लोग ऐसे सफ़र कर रहे होते हैं कि जब हम उनकी तरफ देखें तो अपनी जो मसले हैं, जो अपनी ज़िंदगी की परेशानियाँ हैं, वो भूल जाती हैं।

लेकिन अब एक सॉन्ग ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए जो हम प्ले करेंगे, और ये इस घंटे का आखिरी सॉन्ग होने वाला है, बिकॉज उसके बाद हमने बढ़ना है अपनी न्यूज़ ब्रेक की जानिब, और न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने आज के शो को, लाइव कॉल्स भी आप लोगों की जो है वो शामिल करेंगे न्यूज़ ब्रेक के बाद। उसके लिए आपको डायल करते रहना है 04221111001। स्लिप ऑफ टंग कहते हैं इसको, परेशान नहीं होना। और जनाब फेसबुक कम्युनिटी जो हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहें, facebook.com/fm101 लाहौर, स्मार्टफोन यूजर्स सारे के सारे आज हो जनाब, आप लोगों के लिए मौजूद हैं हम हमारे फेसबुक पेज पर। थोड़ी देर में आपके फेसबुक मैसेजेस जो हैं, जो कमेंट्स हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे शो में। अल्फाज, पता नहीं चला, हमसा मलिक, जैन जुहेब।

जाना कहीं नहीं, हमारे साथ साथ रहिएगा। न्यूज ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं दोबारा। लेडीज लाउंज सुन रहे हैं साथिया रफीक के साथ, एक बजे तक हमारा और आपका साथ। जिंदगी में क्या ऐसा आपको मिल जाता कि आपकी जिंदगी और भी हसीन होती।

वेल वेलकम बैक लॉर्ड क्रैच के आपके साथ FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लाइव वन स्टूडियो से आप सुन रहे हैं लेडीज लाउंज और चिट चैट कर रहे हैं जनाब. आज के शो में हम आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के हवाले से जान रहे हैं और आपसे हमने पूछा कि ऐसा क्या है जो आपकी ज़िंदगी में हो जाता, आपको मिल जाता तो आपकी ज़िंदगी और भी हसीन होती और अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं. सो कीप ऑन थिंकिंग और सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए और सोच के अच्छी तरह से जवाब दीजिए. बहुत सारी ऐसी विशेज़ होती हैं जो नायाब भी होती हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा हम डेली लाइफ में कह लें फोकस भी नहीं कर पा रहे होते हैं और वो एक दिल में दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश ऐसी, एक ख्वाब ऐसा छुप के बैठा होता है कि जिसकी एक कसक होती है, एक कशिश होती है अपने अंदर ही और दिल में एक छुपी हुई कह लें दबी हुई ख्वाहिश होती है कि ये हो जाता, अगर काश ये हो जाता, काश हम ये कर पाते, काश हमें ये मिल जाता तो ज़िंदगी बहुत हसीन होती. सो जनाब facebook.com/FM101 लाहौर हमारा फेसबुक पेज एड्रेस जहाँ पे आप लोगों के मैसेजेस हम तक पहुँच रहे हैं और मैं आप लोगों के मैसेजेस अब शो में शामिल करने जा रही हूँ.

तो देखते हैं किसने ज्वाइन किया हमें और क्या कह रहा है। शमशाद खरल हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल मेहदी हमें ज्वाइन करते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। ज़बरदस्त शो कहते हैं, स्कर्दू से हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। रेहाना खान भक्कर से हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया जनाब, वेलकम टू द शो कह रही हैं। गुल यासीन नाज हमें सुन रही हैं, दिलनशीन रेडियो लिसनर्स क्लब की जानिब से हमें यासीन नाज, एम हफीज़ रहमान, फौजी असलम, एम इकबाल मेहदी, महबूब रौनक, मलिक वसीम अवान, सबका खुलूस प्यार और मोहब्बत भरा सलाम है जनाब, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हफीज़ रहमान भक्कर से हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नईम टेलर हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। आरजे हाउ आर यू, आई एम गुड, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू सो मच, आप कैसे हैं। अकबर खान हमें सुन रहे हैं, कराची से हमारे साथ हैं, दिन बख़ैर कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। फिरोज़ आलम जान हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वेलकम टू द शो कहते हैं। ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरेबिया हमारे साथ हैं, शाहिद, फिरोज़, नियाज, अली, शफकत, हम सब मिलकर कह रहे हैं आपका शो सुन रहे हैं, क्या कहने आपके जनाब। सो ये सारे परदेसी भाई इकट्ठे हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका।

0: जी तो जनाब, लौट कर आ चुके हैं आपके साथ एक बार फिर से। 12:12 हो चुके हैं और जनाब टाइम हुआ चाहता है आप लोगों की लाइव कॉल्स का। लेट्स सी कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, शाहिद नदीम बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से।
0: कैसे हैं आप शाहिद भाई, खैरियत से हैं?
1: जी शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, तबीयत से ठीक है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
1: बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत शौक से आपका शो सुनते हैं।
0: थैंक यू सो मच।
1: पाक एफएम की पूरी टीम को हमेशा सलामत रखे।
0: आमीन आमीन।
1: टॉपिक के हवाले से बस यही ख्वाहिश है कि बस बच्चों समेत फैमिली समेत उमराह पे हो जाए, बस
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर।
1: और बाकी सब खैरियत है? तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए।
1: थैंक यू,
0: टेक केयर।
1: गाना चला दीजिएगा वो मैंने रिक्वेस्ट।
0: जी जी बिल्कुल, मैंने
1: करा मैं लाख बारे। जी थैंक यू,
0: ठीक है ओके इंशाल्लाह। लेना हमारी पहली कॉल बहुत दूर से आ गई और नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन हमारे साथ?
2: जी मैं लाहौर से रिमशा।
0: रिमशा कैसी हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह।
2: आपके शो में मैंने पहले आपको 6-7 बारी सुना, उसके बाद मैंने आपको कॉल की है।
0: जी जी बहुत शुक्रिया।
2: आप अच्छा शो करती हैं, बहुत प्यारा शो करती हैं, लेकिन ये है आप कॉल बहुत कम लेती हैं।
0: कॉल थोड़ी कम लेती हूँ, सही है।
2: शो में जो है ना कॉल बहुत मुश्किल से मिलती है। और आपके टॉपिक पे मैं ये कहूँगी कि अगर जिंदगी अगर हसीन होती, अगर मेरे पास जादू की छड़ी होती,
0: जादू की छड़ी होती तो जिंदगी बहुत हसीन होती। बिल्कुल सही,
2: बहुत हसीन होती। मैं जो मर्जी मैं करती, मेरे पार होते, मैं आसमान में उड़ जाती।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब सच अ क्यूट थिंग ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं फैंटेसी वर्ल्ड में भी। हम लोग सोचते हैं ना इस हवाले से कि ऐसे होता ऐसे होता, आप अकेले बैठते हैं तो कई दफ़ा आप ऐसी चीज़ें सोचते हैं।
2: हाँ वो ऐसा भी होता है ना कि बार दफ़ा इंसान को किसी के ऊपर गुस्सा होता है, चलो जादू की जड़ी से गायब होकर उन्होंने चंदा तो सुट सकते हैं ना।
0: ठीक हो
2: गया। इस तरह के ना सोचती है तो मेरी मम्मा मुझे कहती है तुम कहाँ से आई? मैं कहूँ मैं कोकाप से आई हूँ, इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ।
0: बिल्कुल ठीक हो गया,
2: ये थोड़ा मजाक क्या हो गया, लेकिन मेरी जिंदगी अगर हसीन होती, अगर मैं टाइम को अगर समझ लेती वक्त से पहले, अब कि मैंने अपना टाइम काफी ज्यादा जाया किया है, अगर मैं उसे थोड़ा समेट लेती ना तो मेरी शायद जिंदगी थोड़ी हसीन होती। अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर मैं टाइम को समझती, टाइम की कदर कर लेती तो शायद मेरी जिंदगी हसीन होती।
0: बिल्कुल सही, चले रिमशा बहुत अच्छा लगा।
2: वक्त वक्त में ऐसा भी तो होता है ना आप ही के मतलब
0: जी जी,
2: हम लोग अपने अपनों को टाइम नहीं दे पाते, तो काश अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं वो अपना कुछ ऐसी दिल की बातें होती हैं जो अपनों से कहना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो वक्त निकल जाता है हाथों से।
0: बिल्कुल सही, ऐसा होता है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
2: और सभी सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़। और जनाब रिमशा हमारे साथ बहुत ही क्यूट, बहुत ही अच्छी बातें की। वक्त की कदर कर लेना ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, और अक्सर औकात ऐसा होता है वक्त गुजर जाता है तो हमें पछतावा होता है कि कर लेते तो अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कौन हमारे साथ?
3: मैं बिस्मा फ्रॉम लाहौर।
0: बिस्मा कैसी हैं? मैं ठीक ठाक खैरियत से हूँ, बैक टू बैक आज लड़कियों की कॉल मिल रही है, खैर है? मैं ठीक ठाक बिल्कुल।
3: और टॉपिक पे मैं ये कहूँगी कि पता नहीं आपने कौन कौन सी बातें याद करवा दी हैं। बैठ के सोचती थी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी जगह पे होती हैं या अच्छे मूड में होती हैं तो हमें अच्छा लग रहा होता है, बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, या मौसम बहुत अच्छा होता है, तो फिर हम याद करती हैं कि यार काश मेरी वो फ्रेंड मेरे साथ होती, या अगर हम घर से दूर हैं तो हमें होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते, या हमारे सिबलिंग्स हमारे बहन भाई भी होते तो कितना मजा आता। तो मैं ये सोच रही थी ऐसा भी होता है ना कभी कभी।
0: बिल्कुल
3: तो
0: होता है।
3: फिर हम उनको मिस करते हैं कि यार वो होते तो और ज्यादा मजा आता, और मतलब ये मौसम भी अच्छा लगता, और ज्यादा इंजॉय करते हम।
0: बिल्कुल,
3: तो
0: बिल्कुल।
3: ये फील है, मैं अक्सर मिस करती हूँ जब मैं खुश होती हूँ ना तो मुझे अपने दोस्त याद आ रहे होते हैं कि काश वो भी इधर होते मेरे साथ होते, हम कितना इंजॉय करते, तो मैं इतना शिद्दत से इंतजार कह रही हूँ। मतलब उनको इतना मिस कर रही होती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि क्या उनको भी मेरी याद आती होगी ऐसे जैसे मैं उनको मिस कर रही हूँ, या उनको भी कभी ख्याल आया होगा कि हमारी क्लास में एक लड़की बिस्मा पढ़ती थी, तो वो कहते दिल से दिल को राह होती है, तो शायद उनको ख्याल आ जाए मेरा. कभी कभी ऐसी भी बातें जहन में आ जाती हैं. कभी कभी अपने क्लास के स्कूल फेलोज जो होते हैं, जो स्कूल लाइफ के जो होते हैं ना बच्चे, जो जिनके साथ आपकी अटैचमेंट नहीं भी होती, जो आपके फ्रेंड्स नहीं भी होते, आपको याद आ रहे होते हैं यार हमारी क्लास में एक ऐसी लड़की पढ़ती थी, ऐसा लड़का था, वो ऐसा मजाक करता था, ये वो. तो कभी कभी मैं अपने सारे क्लास फेलो को मिस करती हूँ बैठ के.
0: क्या कहने हैं आपके बिस्मा, आप तो कमाल करती हैं.
3: हाँ वो ना एक ना सॉन्ग लगा देंगे नुसरत फतेह अली खान का अपने पीछे बैकग्राउंड पे.
0: जी जी कौन सा?
3: वो ये है कि सोने मुखरे दा लेन दे नजारा किते केरा तेरा मुल लग दा एना अखियां दा होन दे गुजारा
0: मेरा जोक समझ नहीं आया. और सबसे बड़ा सदमा ये होता है कि आप जोक करें और किसी को जोक समझ ना आए, मतलब सीरियसली. लें जनाब एक फरमाइश थी हमारे पास, इसको प्ले कर रहे हैं. बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी प्यारी बातें की बिस्मा ने और रिमशा ने. नॉस्टैल्जिक हो गए कि यू सीरियसली मिस सम टाइम सम पीपल. जिन लोगों के साथ आपने अच्छा वक्त गुजारा होता है आपको वो याद आते हैं. एंड स्पेशली आई वुड से कि परदेसी लोग जो अपने मुल्क से अपने लोगों से दूर बैठे होते हैं वो बहुत मिस करते हैं अपनी फैमिली को, अपने लोगों को. काश वो साथ होते तो ज़िंदगी ज़्यादा हसीन होती. आई नो दैट बहुत मुश्किल होता है अपनों से दूर रहना. लेजना शाहिद नदीम भाई हमें सुन रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरेबिया, वो और उनके दीगर दोस्त. आप सबके नाम नदीम अब्बास की आवाज़.

0: ले जनाब, क्यों माइये दा क्यों ढोले दा गिला करा। नदीम अब्बास लूने वाला की आवाज़ सुन रहे थे हम जनाब। लौट कर आ चुके हैं आपके साथ एक बार फिर से, और हमारी जो कॉलिंग लाइन है वो ब्लिंक कर रही है, बार बार कर रही है, और हमें बता रही है, दिखा रही है कि आप लोग कितनी एफर्ट कर रहे हैं हमसे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, कॉल ड्रॉप हो गई, आई एम सॉरी। सुजना, बहुत सारे लोगों को मुझसे गिला रहता है कि आप कॉल कम लेती हैं। यकीन करें, मैं अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम साजे बहना, क्या हाल है? ठीक हो?
0: मैं ठीक हूँ। कौन हमारे साथ?
1: मैं बहना बोल, अर्शद बोल, मोहम्मद अर्शद शाहबाज से बोल, जिसकी टांग काटी हुई है।
0: कैसे हैं अर्शद साहब, खैरियत से हैं?
1: दुआ करेगा मैं ठीक हो जाऊँ
0: इंशाल्लाह। इंशाल्लाह
1: आप शाम का शो बहुत अच्छा जाता, पीछे कभी नहीं आप आ जाए, अगर बहुत अच्छा जाता शो। मैं चार बजे तक यही सुनता रहूँ, सुनता रहता हूँ आप रेडियो के।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अर्शद साहब।
1: मेरी उम्र 12-13 साल, मैं कभी रेडियो सुना, जब 6 महीने और 7 महीने मैं रेडियो सुनता हूँ, यही मेरा सुनाई का साथी है।
0: अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आप इसी तरह से खुश बाश। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप शामिल हुए शो में। जी ठीक है, जरूर थैंक यू सो मच। ऑलराइट, अर्शद साहब हमारे साथ थे तो लीजना आपकी हिम्मत है, और अल्लाह ताला की मर्जी में खुश रहना ये हर एक के बस की बात नहीं होती। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे अपनों के साथ, अपने प्यारों के बीच में, और खुशबाश रहें और मुतमईन रहें अपने ज़िंदगी से, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी नेमतें होती हैं, लेकिन वो उस तरह से उनका शुक्र अदा नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, हक अदा नहीं कर पाते। हम बहुत सारे लोग, बल्कि हम कहेंगे कि हम सभी ऐसे हैं बेशक। सो जनाब, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। बहुत हिम्मत मिलती है ऐसे लोगों से बात करके। लाइक आई वाज सेइंग, मैं आप लोगों से यही बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो बहुत सफ़र कर रहे होते हैं, और जब हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो एहसास होता है कि हमारी ज़िंदगी और हमारी मुश्किलात तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, है ना जनाब। सो दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ। हम तब तक जो है वो अपना रोना रोते रहते हैं जब हम अपने आस पास नज़र नहीं दौड़ाते। और राइट, कॉल हमारी लाइन ब्लिंक कर रही बार बार। अस्सलाम वालेकुम।
2: ये बिस्मिल्लाह, आपकी सादी आवाज़। वालेकुम सलाम, मैं अब्दुल हमीद का बात हूँ, शमशी रेडियो क्लब वालों। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप?
2: देखना आप ही अर्शद भाई है ना, जिवे सियाने कहने ना, तंदुरुस्ती दे हजार नेमत,
0: हजार नेमत है बिल्कुल।
2: अल्लाह पाक भाई अर्शद वास्ते अल्लाह पाक आसानियां करे, अल्लाह पाक खास अल्लाह पाक अपनी मेहरबानी करे, बहुत सारियां दुआवां अर्शद भाई वास्ते, क्योंकि बंदा कोई भी बंदे का एक हजार भी कटिया जाए ना तो बंदा दूर हो जाता है अल्लाह पाक के वास्ते, बहुत सारियां दुआवां।
0: बेशक।
2: हां, रजा भाई भी कॉल आई सी मैनू, कहना आप ही साहब यार यार
0: सिला मिल जाता है। क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? क्या कहेंगे?
2: आपकी टॉपिक अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सारी मेरी तो ख्वाहिश आपकी अल्लाह पाक जिंदगी हसीन होने वास्ते ना अल्लाह पाक सोने का घर बखा दे, अपने प्यारे का रोजा बखा के, अपना घर बखा के, फिर ऐसा काम कर जो दुनिया से कोई पिछो ना लैन आला कवे यार, पता ही चंदा चंदा ही हमीद भाई यार, दवावां हो जाए बाद च जिंदगी जान तो बाद
0: इंशाल्लाह।
2: ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ,
0: ਮਿਹਨਤ
2: ਚਮਕੀ ਰੇਡੀਓ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ।
0: ਥੈਂਕ ਯੂ,
2: ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਅੱਲਾ
0: ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਲੇ ਜਨਾਬ, ਜਿਸ ਕੀ ਕਾਲ ਮਿਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ, ਓਵਰ ਦਾ ਮੂਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਨਾਬ ਆਈ ਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਯੂਸੀ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਐਨੀ ਜਨਾਬ ਕੀਪ ਔਨ ਡਾਇਲਿੰਗ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
3: ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਸਾਡੀ ਆਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਰਿਕ ਅਸਲਾਮ।
0: ਕੈਸੇ ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਬਤਾਇਆ ਆਪਨੇ, ਆਫਰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਆ, ਆਪਕੀ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ?
3: ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅਸਲ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪੀ, ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਜ਼ੂਮੰਦ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਬਾਖਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਖਬਰ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸਹੀ ਆਰਜ਼ੂ ਕਿਸੀ ਜੁਸਤਜੂ ਮੈਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਤੋ ਮੈਨੇ ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਜੋ ਖੋਇਆ ਉਸਕਾ ਮੁਝੇ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵੋ ਕਿਸੀ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ ਇੱਕ ਖਵਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪਾਸ ਹੈ ਵੋ ਸਭ ਸੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ।
0: ਕੁਦਰਤ
3: ਪੇ ਸ਼ਾਕਰ ਔਰ ਬੇਪਨਾਹ ਖੁਸ਼ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ।
0: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚਲੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਤਾ ਤੋ ਔਰ ਹਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
3: ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਸੇ ਮੰਗਾ ਉਸਨੇ ਅਤਾ ਕੀਆ,
0: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ,
3: ਤੋ ਉਸਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਤੋ ਕਰ ਲੈ ਪਹਿਲੇ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ,
3: ਇਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੁਛ ਔਰ ਮੰਗਨੇ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਕਰੇ।
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਾਰਿਕ
3: ਭਾਈ। ਅਕਸਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਾ ਜੁਮਲਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦਾ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਰਵੇ।
0: ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ।
3: ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਭ ਕੇ ਲਈ ਦੁਆਏ, ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਦਾ ਜਿਗਰ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।
0: ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਜਨਾਬ। ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਕੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਮੈਸੇਜਸ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਆਪਕੇ ਲਈ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਨਿਗਲ ਆਏ ਇਸ ਪਸੂੜੀ ਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸਭੀ ਪਿਆਰੇ ਸਵੀਟ ਲਿਸਨਰਸ ਕੇ ਨਾਮ ਦਿਸ ਟਰੈਕ ਔਰ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਲੌਟ ਕਰਾਤੇ ਹੈਂ ਆਪ ਲੋਗ ਕੇ ਸਾਥ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਾਤਚੀਤ। ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਲਗਤਾ ਹੈ ਆਪਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਕਿਆ ਐਸਾ ਥਾ ਜੋ ਆਪਕੋ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਤੋ ਔਰ ਵੀ ਹਸੀਨ ਹੋਤੀ ਆਪਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਸੋਚੀਏ, ਗੌਰ ਕੀਜੀਏ ਔਰ ਹਮੇਂ ਬਤਾਈਏ। 0422111001 ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਕੀਪ ਡਾਇਲਿੰਗ, ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੀ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ੋ ਮੇਂ।

0: 12:35 on the dial right now. लौट कर आ चुके आपके साथ एक बार फिर से FM 101 Radio Pakistan लाहौर के लाइव ऑन एयर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं लेडीज लाउंज, लेडीज लाउंज और मुझे कहते हैं साथिया रफीक। सो जनाब ढेर सारी लेडीज भी हमें सुन रही हैं, मर्द हजरात भी हमें सुन रहे हैं। आप हमें बता रहे हैं आपकी ज़िंदगी में आखिर ऐसा क्या था जो आपको मिल जाता तो आपकी ज़िंदगी और भी हसीन होती है। अस्सलाम वालेकुम
1: जी। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। आप
0: जी? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। कौन हमारे साथ?
1: जी मोहम्मद शहजाद शाहबाद से जी।
0: कैसे हैं शहजाद साहब, खैरियत से?
1: ठीक है जी, आपकी दुआएं माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत प्यारी आवाज, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी तंदुरुस्ती रखे जी।
0: आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया।
1: देखे जी जो आप टॉपिक बोल रहे हैं ना, ये तो देखे ना, आदमी की जो उम्मीदें होती है ना वो कभी खत्म नहीं हो सकती जी। तो वो ये कहता है कि मैं इस तरह करता ये हो जाता ये, लेकिन होगा वही होता जो अल्लाह ताला को मंजूर होता जी। जो अपने इख्तियार में आता तो फिर गरीब तो दुनिया में भी ना रहता, जो पैसे की ख्वाहिश रखता है वो बहुत अमीर हो जाते हर लोग। लेकिन इसी तरह निजाम भी चलता है, कुछ तकदीरी मसले होते हैं को अल्लाह ताला की रजा होती है, आदमी जहाँ पे ख्वाहिश अपनी खत्म कर चलता है,
0: बिल्कुल
1: आगे भी नहीं चल सकता।
0: ठीक हो गया।
1: तो उम्मीदें तो रखनी चाहिए अल्लाह ताला से, अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। या अल्लाह मुझे जिंदगी तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा, बगैर जो चीजें सब देना ये सब कुछ इधर ये खत्म हो जाना। लेकिन अच्छा जो है ना अपनी जिंदगी की तंदुरुस्ती मांगनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही
1: जी। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा माशाल्लाह आपका प्रोग्राम, बहुत बहुत सबको मेरा सलाम, जितने बहन भाई आते हैं सब भारतीय को मेरा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज। ऑलराइट शहजाद साहब हमारे साथ थे। सनिया हफूर हमें सुन रही हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं टू ऑल रिस्पेक्टेड लिसनर्स फ्रॉम फिरोजपुर रोड लाहौर से हमें सुन रही हैं। जनाब बहुत शुक्रिया सनिया, आपने हमें ज्वाइन किया। उज़्मा एजाज ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं, अल्लाह ब्लेस यू कह रही हैं, आमीन, थैंक यू सो मच। मोहम्मद हमजा खेतमा खेमता खेमता, आई नो मतलब इट्स नॉट इन उर्दू और इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आई एम सॉरी अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ। मूसा वाली पिपला से हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। राना इश्तियाक अहमद हाफिज़ाबाद से हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हमदुल्ला माला खैल हमें ज्वाइन करते हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि दुनिया एक ख़तरनाक जगह है, उन लोगों की वजह से नहीं जो बुराई करते हैं बल्कि उन लोगों की वजह से जो बुराई होते हुए देखते हैं और रोकते नहीं। बड़ी बड़ी बातें। ले जनाब एक और कॉलर को शामिल करते हैं हमारे साथ हैं। कौन? अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम वन वन के सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से हंसता मुस्कुराता हुआ अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो साबिया जी?
0: मैं ठीक, आप कैसी हैं शमीमा पी?
2: अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपका शो सुन रही हूँ। तो साबिया जी देखिए आज तो पानी आई,
0: क्या कह रही हैं? सॉरी
2: मैंने कहा अच्छा वो तुबा आती है ना, तुबा किसी और शो में आती है। तो ये कि देखो सादिया जी कि इंसान जो है जब तक जिंदगी है ना इंसान की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। अगर एक ख्वाहिश हमारी पूरी होती है दूसरी जन्म ले लेती है, तीसरी दूसरी जन्म पूरी होती है तीसरी ले लेती है। तो वो क्या किसी ने कहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश से दम निकले, निकले भी सही मगर बहुत कम निकले। ख्वाहिशें जो है ना इंसान की कभी भी जिंदगी में पूरी नहीं होती।
0: तो अभी अभी की बात करेंगे शमीमा पी, तो क्या लगता है आपको अभी आप किस चीज़ की ख्वाहिश रखती हैं जो आपको लगता है कि ये चीज़ हो जाए ना मेरी जिंदगी में?
2: लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मैं जितना भी अदा करूँ वो कम है मेरे लिए। मेरे दिल में कोई हसरत कोई ख्वाहिश नहीं है, मैंने जो कुछ चाहा है जो अल्लाह के हजूर अल्लाह से मांगा है वो मुझे मिला है।
0: माशाल्लाह
2: इस वक्त तो मेरे मतलब कोई ख्वाहिश नहीं है मेरे दिल में आ रही, आगे का पता नहीं, आने वाले दिनों में अगर आज हो जाए आ जाए ख्वाहिश तो कुछ नहीं कह सकती।
0: ठीक हो गया,
2: हर तरह से मुझे नवाजा हुआ है
0: माशाल्लाह माशाल्लाह।
2: सादिया जी ये है कि गाने की मैंने कल भी फरमाइश की थी तो उन्होंने मजाक में डाल दिया था तो प्ले भी नहीं किया था। तो अगर हाँ जो हो सके ना तो वो गाना है, अगर मैं बेवफा हूँ तो तू भी।
0: लेकिन हमने नदीम अब्बास को प्ले कर दिया। चले मैं कोशिश करती हूँ हम लास्ट में थोड़ा सा प्ले करें, ठीक है?
2: चलो नहीं कर दिया तो कोई बात नहीं, रहने दे फिर, कोई नहीं, कोई बात ही नहीं है तो बाकी ये। हाँ, कोई बात, कोई मसला, मैंने नाराज थोड़ा
0: कोई
2: होगा
0: ख्वाहिश ही नहीं है, कोई कोई हसरत ही नहीं है।
2: ऐसा ही ना, मैंने तो पहले कह दिया कोई ख्वाहिश नहीं है, ना भी होगा फिर भी कोई बात नहीं, गाने तो हम पूरा दिन सुनते ही रहते हैं।
0: चलें, थैंक यू सो मच, आप शामिल हुई शो में, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
2: अरे भाई, तो कोई तो तारिक भाई हैं, हमारा बेक है, रुबीना जट्टी है, रिजवाना है, और अनिला तो बिल्कुल आ ही नहीं ना रही, अनिला भी हमारी वो नहीं आ रही अभी तक, और हनीफ भाई, इन सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, जनाब, बैक टू बैक आप लोगों से बातचीत हो रही है और आपके ज़िंदगी की खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत यादें और खूबसूरत ख्वाहिशें सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन हमारे साथ?
3: मेरा नाम मलिक अली हैदर है, अली हैदर वसीम फ्रॉम मॉडल टाउन।
0: कैसे हैं अली हैदर साहब, खैरियत से?
3: अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, आपने नाम सही लिया, मैंने आगे दो बार कॉल की थी बुध वाले दिन तो मेरा नाम ही गलत लेते।
0: ओए होए, इतना जुल्म ये किसने किया?
3: बस वो भी हमारी आदमी है, बहुत रिस्पेक्टेड, तो उन्होंने दो बार किया था।
0: चलिए, क्या कहना चाहेंगे आज के शो के हवाले से?
3: टॉपिक क्या पहले बता दें मुझे आप।
0: मैंने ये पूछा कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मिल जाती तो आपको लगता है आपकी जिंदगी और भी अच्छी होती, और भी हसीन होती।
3: जी, मैं मसलन इंसान की तो वैसे बहुत ही ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन मेरी अपनी जो पर्सनल थी वो ये था कि मेरा लॉ कम्प्लीट हो जाता, काफी साल था वो मेरा नजर के मतलब हुआ
0: लॉ क्लियर हो जाता।
3: और इसके अलावा इससे भी बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं मसलन मदीना देखता और ज़ियारत करता।
0: चले इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको काम।
3: और एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरा दोस्तों को, मेरा मेहर इम्तियाज है, लाहौर में एडवोकेट है, मीरपुर आजाद कश्मीर में सैयद अली हसनैन, और सैयद अरूज बादशाह बकर में, और इंग्लैंड में मेरे दो दोस्त हैं मसूद और कामरान अशरफ, और अली नगर सऊदी अरब, इन सबको मेरी तरफ से सलाम। और एक सॉन्ग अगर हो सके तो मेरे दोस्त हाफिज प्रोफेसर जहीर अब्बास साहब के लिए प्ले कर दें, ये दौर नहीं है वफा का। बहुत शुक्रिया होगा, बहुत मेहरबानी
0: जी। ठीक हो गया,
3: अल्लाह
0: हाफिज। वो अभी जैसे शमीमा भी कह रही थी ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। सो जनाब, ढेरों ढेर ख्वाहिशें ऐसी होती हैं हमारी जिंदगी में जो हम चाहते हैं पूरी हों लेकिन हो नहीं पाती, जैसे ढेर सारी बातें करते हैं आरिफ लोहार इस ट्रैक में। ढेर सारी ख्वाहिशें पूरी करने की बात करते हैं, ऐसे लोग भी होने ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, खाली ख्वाहिशों से गुजारा नहीं होता। सो आरिफ लोहार मौज करा रहे हैं, आप भी कीजिए, इस ट्रैक के बाद लौट कर आते हैं।

0: Alright, listeners, we're back. 12:47 on the dial. आखिरी गुफ्तगु आप लोगों से करेंगे, शो को सम अप करेंगे. आज का टाइम होने वाला है खत्म. अस्सलाम वालेकुम.
1: क्या हाल है आपके?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. जबरदस्त आपकी शो सुन रहे, बहुत अच्छा लग रहा है. और अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में जो भी कुछ पाया हुआ है बहुत अच्छा है, और जो खोया हुआ इसकी कोई टेंशन नहीं आती.
0: फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख्वाहिश, कोई छोटी सी बात, कोई
1: कुछ इस तरह नहीं है. बस अभी बात यह भी, जब आपके बिजनेस कारोबार सही हो तो फिर आप वो ख्वाहिशात को भी जल्दी पूरी कर सकते हो. हमारे ख्वाहिशात छोटी छोटी ख्वाहिशात वो मैंने सारा पूरी कर ली है
0: इंशाल्लाह. इंशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप शामिल हुए शो में. कुछ और कहना चाहेंगे?
1: इंसान के लिए जो मेहनत कर रहा है, जब इंसान मेहनत करे ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएगी. जब मेहनत करेगा
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ऑलराइट, कॉल कट गई, लेकिन बहुत ही अच्छी, बहुत ही मुख्तसर सी और भरपूर बात की अल्हम्दुलिल्लाह ने. और 100 बातों की एक बात थी. उन्होंने कहा कि ख्वाहिश रखते हैं तो उसके लिए मेहनत भी करें, मेहनत करेंगे तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं. बिल्कुल ऐसा ही जनाब. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू. मैं कमलनाथ बात कर रही हूं.
0: कैसी हैं कमल साहिबा, खैरियत से हैं?
2: हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं?
0: मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. शो सुन रही हैं, क्या कहना चाहेंगी?
2: हाँ जी मैं शो सुन रही हूँ. बड़ा प्यारा शो है, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरबा मेरे, मगर फिर भी कम निकले. इंसान की ख्वाहिशात पूरी तो नहीं होती, अगर एक पूरी हो जाती है तो दूसरी तैयार होती है. और कोशिश करनी चाहिए वैसे इंसान को कि ख्वाहिशात महदूद रखनी चाहिए. अगर कोई पूरी ना भी हो तो फिर बंदे को दुख नहीं होना चाहिए. और मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह का शुक्र है वैसे तो, अल्लाह ताला से जो मांगा है वो अल्लाह ताला ने नवाजा है और औकात से बढ़कर दिया है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है. लेकिन जो मेरी ख्वाहिशात है ना, वो ये है कि काश मेरे पेरेंट्स इस वक्त मेरे साथ होते और शायद मेरी जिंदगी ज्यादा खूबसूरत होती, ज्यादा खुशियाँ होती, ज्यादा हसीन होती.
0: बेशक, बेशक.
2: इसके अलावा को अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत शुक्र है. वैसे भी अल्लाह ताला अपने बंदे को बेहतर से बेहतर नवाजता रहता है, और वही कुछ नवाजता है जो इंसान के लिए बेहतर होता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बेशक.
2: और बहुत प्यारा आपका शो है. मैं लेट ज्वाइन किया है मैंने 12 बजे, लेकिन मुझे पहले याद नहीं था, अचानक याद आया तो मैंने कहा मैं सुनूं. और मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को बहुत ज्यादा सलाम, सेहत तंदुरुस्ती की दुआ. और मेरे सबसे ग्रुप वाले जितने भी बहन भाई हैं सबको बहुत सलाम, तंदुरुस्ती की दुआ, और आपके लिए भी खसूसी दुआ. अल्लाह हाफिज.
0: अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच. ले जनाब, आज के लास्ट कॉलर से बात करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम. एंड अस्सलाम वालेकुम FM 101 रेडियो पाकिस्तान से आपको वेलकम, खुश आमदीद जी आयानु. अहलन वसहलन मरहबा बली करी आयानु ते बखैर आले. कैसी हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ. आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है.
3: मेरी आवाज़ आपका ठीक आ रही है?
0: अब ठीक हो गई है. ले जनाब, क्या कहना चाहेंगी? आपकी भी डबल डबल कॉल मिल गई है.
3: बस देख ले, कभी कभी ना डे अच्छा होता है, लकी डे होता है कि मेरी कॉल मिल जाती है डबल डबल, वरना तो एक भी नहीं मिलती.
0: एक भी नहीं मिलती है ना, आज दो दो मिल गई हैं. चलें, क्या कहना चाहेंगी?
3: बहुत अच्छा शो, और वाकई कवल आपने सीखा है कि ख्वाहिशें तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती. लेकिन हमें चाहिए कि हमें उतनी करनी चाहिए जितनी हमें पता हो कि ये हमारी पूरी हो जाएगी. फिर ये है ना कि फिर बंदा मायूस हो जाता है और फिर कहता है यार मेरी किस्मत ऐसी तो मेरी किस्मत वैसी. किस्मत में इस वक्त कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ये होता है कि बस जो आपके हक में लिखा जाता है ना, जितना आपको बस उतना मिलता है, ना उससे कम मिलता है ना उससे ज़्यादा मिलता है.
0: बिल्कुल सही.
3: जिस हम लोग अल्लाह की रजा में खुश होना सीख लेंगे ना, तो फिर तो शायद हम कभी ख्वाहिश करें ही ना कोई.
0: चलें, थैंक यू सो मच शो में शामिल होने के लिए. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके.
3: थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत अच्छा. लगता है आपको सुनने सुनना और आपकी बातों को बहुत अच्छा बोलती हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और तमाम सुनने वाले।
0: चलें, थैंक यू सो मच शो में शामिल होने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
3: थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपको सुनने सुनना और आपकी बातों को।

लाइन को कि मैराथन कंप्लीट हो जाए किसी तरह। सो जनाब, आप लोगों से बात करके और आप लोगों की गुफ्तगू सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी मिलती है और भरपूर किस्म की पार्टिसिपेशन, आप लोगों की जो एफर्ट्स होती हैं, जितना आप लोग मेहनत कर रहे होते हैं, डायल करते हैं बार बार, आप लोग फेसबुक पे आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स हम तक पहुँचते हैं। नज़ीर खोसन ने हमें ज्वाइन किया है, सोबतपुर बलोचिस्तान से हमें सुन रहे हैं और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। आप सबका वो लोग जिन्होंने ऑफर कॉल की, वो जिनकी ऑनर हमसे बात हो गई, जो फेसबुक पे हमारे साथ हैं और वो लोग जिन्होंने बहुत एफर्ट की हमसे बात करने के लिए, हम आवाज़ होने के लिए, लेकिन उनकी कॉल हम अटेंड नहीं कर पाए या कॉल जो है नहीं मिल सकी, आप लोगों से भी हम कहेंगे सॉरी माजरत आज के शो से। और बाकी ख्वाहिशात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और अगर हम इन अ वे देखें तो ख्वाहिशात हमारी ज़िंदगी का मकसद हैं। ख्वाहिशात ही हैं हमारी जो हमें ज़िंदा रखती हैं, जो एक तहरीक रखती हैं हमारी ज़िंदगी में, हमें मजबूर करती हैं हम चलते रहें, सफ़र करते रहें। ये हमारी ज़िंदगी का कह लें कि लाजमी हिस्सा है, ये इंसान की फितरत का हिस्सा है, हमारी नेचर का हिस्सा है। सो ये जब हम कहते हैं ना कि अपनी ख्वाहिशात को महदूद रखना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ये बात ठीक भी हो सकती है कि जितना हम अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाते हैं उतना उलझनों में भी फंसते चले जाते हैं, लेकिन इनका होना हमारी ज़िंदगी में, इस कसक का, इस कश्मकश का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग बेमानी हो जाती है। और जहाँ तक अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखना है और अपनी ख्वाहिशात को पूरा होता हुआ देखना है, उसके हवाले से मैं ये कहूँगी कि कभी भी मत सोचिए कि मैं ये ख्वाहिश करूँ ये ना करूँ। आप दिल खोल के ख्वाहिश कीजिए, आप दिल खोल के बड़ा सोचिए, आप दिल खोल के अपने ख्वाबों को बड़ा बड़ा बनाइए और अल्लाह के हुजूर पेश कीजिए। आप जिसके आगे वो चीज़ें पेश कर रहे हैं उसकी ज़ात बहुत बड़ी है, उसकी रहमत की कोई हद नहीं है, उसकी करम का जो समुंदर है वो बह रहा है और उसके कोई किनारे नहीं हैं, दूर दूर तक नहीं हैं। तो इसलिए जब भी हम ख्वाहिश रखें, उम्मीद रखें अल्लाह की ज़ात से, तो मैं कहती हूँ दिल खोल के, अपनी हिम्मत के मुताबिक, इस्तेआत के मुताबिक, आपका जहन जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक अपना गोल सेट कीजिए। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि ये मुझे कहाँ मिलेगा, ये मुझे कैसे मिल सकता है मेरी ज़िंदगी में। जो हम नहीं सोच सकते, जो चीज़ें हमने कभी हमारे जहनों से, हमारे वहमो गुमान से नहीं गुजरी होती, अल्लाह ताला वो चीज़ें भी हमें अता करने की इस्तेआत रखते हैं। उनके पास ही सारी शाही है, उनके पास ही सारी ताकत है। सो कभी भी महदूद मत कीजिए अपनी ख्वाहिशात के दायरे को, मैं तो यही कहूँगी, मेरा यही ईमान है अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर। दिल खोल के मांगिए, वो देने वाला है और वो कैसे देगा आपको ये उसने तय करना है, और आप जब देगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि ओह ऐसे भी हो सकता था मेरी ज़िंदगी में। Seriously, I have gone through this. I have achieved a lot in my life. Alhamdulillah. ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे काम मैंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं जिनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये भी करूँगी, मैं यहाँ तक पहुँचूँगी, मैं वहाँ तक जाऊँगी, लेकिन वो सब मुझे मिला है। हमेशा ड्रीम बिग कीजिए, हमेशा अपना जो एम है उसको हाई रखिए। आप यकीन कीजिए, हम जैसा सोचते हैं, हम जैसी ख्वाहिश रखते हैं, वो चीज़ें जब हमारे अंदर मौजज़न होती हैं, जब वो लगन जागती है, तो ना सिर्फ हम उसके लिए एफ़र्ट करते हैं बल्कि कायनात भी एफ़र्ट करती है। अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की करम हम पे हो जाते हैं और वो चीज़ें हमारी पलक झपकते में हम तक पहुँचती हैं। बिलीव में इट हैपन्स। सो आज के इस शो से मेरा मैसेज आप लोगों के नाम यही है, अच्छी उम्मीद रखिए, अच्छी ख्वाहिश रखिए, वक्त से उम्मीद रखिए, आने वाले वक्त से उम्मीद रखिए कि वो बेहतर होगा इंशाल्लाह। ली जनाब, एक मेलोडियस सा ट्रैक है, स्लो ट्रैक है, लेकिन एक अच्छा ट्रैक है, मतलब आई रियली लाइक इट, आई अप्रिशिएट इट। और शमीम आपी की फरमाइश थी, हमने कहा जाते जाते थोड़ा सा प्ले करते जाते आप लोगों के लिए। आई नो
के इस मूड पे मैं शो खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन जनाब एनी हाउ इस उम्मीद इस ख्वाहिश के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात इन द नेक्स्ट शो, इन द सेम शो।

कहते हैं लेडीज लाउंज नेक्स्ट मंडे, उस तक के लिए आपसे कहेंगे रखिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल, जहां भी हैं जिस भी हाल में, जस्ट प्राउड टू बी पाकिस्तानी एंड से ऑलवेज पाकिस्तान जिंदाबाद। टेक केयर, फिर अमान अल्लाह।

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا

0: गया नूरी आ गया नूरी आ गया नूरी आ गया
1: क्यों जी कोई शक है क्या?

0: FM 101 Station of the Nation.
1: सुनते रहिए FM 101 101 101.

0: जी सदके
1: FM 101 नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे
2: फिर
3: ठीक ठाक जी मैं अनीला बोलती पी हाँ क्या मैं समान की टाकी ला भी आनी है ला भी आनी हाँ
2: अनीला जी सू अभी दिल्ली अगर तो जी एन कहने तुम्हें प्रोग्राम से मैसेज किया पैगाम किया क्या मैं पूरी कोशिश करती पी थोड़े प्रोग्राम से आव तो आके सारे भैन भरावान जिन्हें भी साढ़े सुनने वाले ने सारे लिसनर ना मैं सलाम दुआ देव बिल्कुल ठीक है जो तुम आओगे ना तो रौनक लग जाएगी जो रौनक लग जाती है ना तो फिर यकीन करो मेले लग जाते मेले लग जाते हैं तो फिर ठेले लग जाते हैं तो ठेले से की विकते जनाब मठियाइया विकदी लेकिन तो लम्बे विकते हैं वो ठीक हो गया भाजी अनिला जी बड़ी मेहरबानी उस्ताद जीरा साढ़े प्रोग्राम शामिल होने मैं उस्ताद जीरा बोलता मैं सैदपुर तो उस्ताद जीरा जी क्या बात है जनाब उस्ताद जीरा जो आते हैं ना बड़े बड़े मजेदार डायलॉग सू सुना तो उन्होंने जो सुना तो सू सुन के बड़ा मजा आता एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच पांच करैक्टर नाल विच लड़ाई मार कुटाई की आवाज़ भी कर देने डिशकू डिशकू जीरा जी क्या बात है जनाब उस्ताद जीरा कहें कि जनाब कल मेरी बर्थडे देखी सी कल मेरी सालगिरह सी तो सारे भैन भरावान सज्जनों को दस दौ और तुहाडी सालगिरह तो असीं दस दिता आ सालगिरह उस्ताद जीरे की होवे आए ते केक ना कटिया जाए ऐ किस तरह हो सकता है ओके जनाब साढ़े वालों ढेर सारिया मुबारक क्या बात है जनाब तुम अपनी सालगिरह मनाते पे जे केक खाते पे जे केक कटते पे जे तो सारे भैन भरावान कहते जे कि जनाब मेरा सलाम पहुंचे तो सारे भैन भरावान सजना बेलियां वालों तुहाडी सालगिरह की बड़ी बड़ी मुबारकबाद कबूल होवे मोहम्मद शहजाद ओ क्या बात है जनाब मोहम्मद शहजाद मोहल्ला जट साढ़े प्रेम शामिल हो कहते जनाब और सारे सलाम दे दियो मैं मोहल्ला जट बोलता पिया मोहम्मद शहजाद बड़ी मेहरबानी यार तू प्रोग्राम से शामिल हो जाना यकीन करो इंज लगता मेरा दिल कहता रोशना मोहल्ला जट नहीं शहजाद बेश हुंदा जा रहे ओके जनाब मोहम्मद शहजाद बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम शामिल होने का बहुत सारा शुक्रिया तो करमदास भी साड़ा प्रोग्राम सुनता पिया करमदास ने कहा जी कि बड़ा सोना प्रोग्राम है करमदास की गल बड़ी मज़ेदार है एक कला बह के प्रोग्राम नहीं सुनता करमदास के नाल ढेर सारे बंदे होंगे ने करमदास नूं असीं कहांगे डेरा तुहाड़ा भी सजिया पिया तो डेरा साडा भी सजिया पिया है वरवर एवं पाकिस्तान तुहाडा अपना फैमिली स्टेशन अज के प्रोग्राम के एक तो असीं तुहाडे कोल सुनने ने टोकवे ठीक है ना टोकवे सुनने ने तो उस और थोड़े को भी पूछा कि जब टोकवे का जिक्र होंगे तो फिर डोके का जिक्र भी होता है डोके के गारे से गल करा तो डोका किनू कहते हैं तो अज के प्रोग्राम की जी जी अखान है ना वो है जे चन्ना दे चढ़न ते मियाँ दे वरन एदा मतलब तुसीं दसना की मतलब है चन्ना दे चढ़न ते मियाँ दे वरन दा की मतलब है दसदा नहीं मैनू और दस अच्छा जिहड़े सी ना मास्टर जी की गल हुंदी पई सी मास्टर जी कहिंदे ओह फिर ना मतलब मुंडे नूं बुला के ना ते जिहड़ा स्टूडेंट हुंदा सी कोल बुला के ना छेवीं सत्तवीं अठवीं दे स्टूडेंट ते उहनूं बुला के कह रहे ने ओह दसदा नहीं ओह दसदा नहीं ओह मोल ओह फुट मूह उस तो बाद कुट कुट के की बना दिते सी ओए हाय हाय हाय खैर कोई गल नहीं जनाब यह चीज़ा जिहड़ियां ने हासे खेडण वास्ते बिल्कुल ठीक ने मगर हुण साडे स्कूलां दे विच ऐसी कोई सूरत हाल नहीं और बड़ा प्यार किया जाता है उस जमाने भी प्यार किया जाता सी पुराने जमाने च मगर हुण जिहड़ा ना वो बाहर स्कूलों के बाहर लिखा है मार नहीं प्यार बिल्कुल ठीक है जनाब अंदर जाके वेखना पेगा कि वाकई यह गल सही है कि नहीं कि मास्टर जी तो लुके तो नहीं कुटते पे खैर जनाब बच्चों को डांटना भी बड़ा जरूरी होंगे कभी कभी थोड़ी जी थोड़ी बहुत लाने भी बड़ी जरूरी होंगी है तो खैर यह गलों तो असं करते रहेंगे तो थोड़े कुछ पैगाम ने फेसबुक के उत्ते अगर थोड़े पैगाम घट हो ना और मैं फेसबुक के पेज में सफर में पाड़ देना भाजी ਓਕੇ ਜਨਾਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰਾਜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਡਮ ਮਲਕਤ ਰਨਮ ਨੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

दिन के 2 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि अफगान तालिबान को इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक अपने वादों की पासदारी करते हुए इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। वज़ीर इत्तला'आत ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक इंतहाई खुशाइन तब्दीली आई है जिससे सूबे के अवाम को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए क़ुव्वत मिलेगी। वज़ीर पेट्रोलियम ने रियाज में अहम रहनुमाओं के साथ मुलाकातें की जिनका मकसद तेल और गैस के शोबों में दो तरफा तआवुन को फ़रोग देना था। और हिफ्ज़ो क़िरत का 41वां दो रोज़ा कौमी मुकाबला बुध से इस्लामाबाद में शुरू होगा।

0: Hi, this is FM 101.
1: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है, और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
2: From analog roots to digital perfection, 28 years of pure sound, local stories, and non-stop music. FM 101, the voice you trust.
3: This is FM 101.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: There's only one station that keeps you moving. Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।
2: आइए सामीन, अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोजाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
3: आज हम बयान करेंगे पारा है 9 और रुकू है 20 और सूरत है अलाराफ और आयत मुबारक है 158। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा यहयी व युमीतु फ़ामिनु बिल्लाहि व रसूलिही नबीयिल उम्मी अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमाते ही व तबेऊ ला लकुम तहतदून। सदक अल्लाह अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कुल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दीजिए। या अय्युहन नासु ए लोगो, यानी लोगों से मुखातिब है। या अय्युहन नासु ए लोगो, इन्नी के बेशक मैं रसूलल्लाह अल्लाह का रसूल हूँ, अलैकुम तुम्हारी तरफ, जमिया सब कायनात पूरी, यानी पूरे तमाम आसमानें, तमाम जमीन, हजर शजर नबातात, तमाम समंदर, जहाँ जहाँ मखलूक है ना, सब के लिए जमिया, जमिया का अल्लाह ने लफ़्ज़, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावात, वो जो है लहू इसी के लिए है, मुल्कुस समावात बादशाहत आसमानों की अल्लाह के लिए है, वल अर्द और ज़मीनों की भी बादशाहत उसी के लिए है। ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, हाँ इल्ला सवाए उसके, हुआ यही वही ज़िंदगी देता है, वो यमी तो और वही मारता है, फ़ामिनु बिल्लाह बस मान लो अल्लाह पर, व रसूल ही और उस रसूल पर, अन्नबीउल उम्मी जो जाहिलों बेपढ़े लोगों का और एक पढ़ा लिखा नबी है, जिसको अल्लाह ने पढ़ाया है, अल्लाह का पढ़ाया हुआ नबी जो अनपढ़ों पर उतरा। तो अल्लज़ी युमिनु बिल्लाह, वो जो ईमान रखता है अल्लाह बिल्लाह अल्लाह पर, व कलिमात ही उसकी बातों पर, व तबेऊ और पैरवी करो उसी की, लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून हदायत पा जाओ। सदक अल्लाह। ये तो था इसका लफ्ज़ी तर्जमा जो पेश किया गया। अब इसकी शान नज़ूल इस तरह से है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी ना नात मुबारक है, इस तरह की अल्लाह ताला ने तारीफ़ की है आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि देखो तुम उनकी इत्तबा करो, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे अव्वल तो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत सबको आम है, बल्कि हकीकत यह कि तमाम अम्बिया कराम और उनकी उम्मतें, तमाम रसूल व जिन्नात मलाइका सभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। सरकार दो जहाँ नबी मोहतरम इमाम अम्बिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके सरदार हैं, और ये भी ख्याल है कि उम्मत उसको कहते हैं जिनकी तरह नबी तबलीग के लिए भेजे जावें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को भी तबलीग की है, ठीक है ना। तो पहले अम्बिया कराम ख़ास किसी मुल्क, किसी मोहल्ले, किसी इलाके या किसी शहर के लिए नबी बन के आते थे, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ लाए तो जमिया के लिए आए, हाँ सातों आसमान ऊपर अर्श तक और सातों ज़मीनें नीचे, सारा तमाम के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और दूसरी कौमों पर उनकी इताअत करना फ़र्ज ना होता था, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुश हो के इताअत करे या नाराज़ हो के इताअत करे, आका के सब उम्मती कहलाए, सब आका की उसमें आते हैं जुरिसडिक्शन में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जब तशरीफ़ ले गए तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाया, ए मूसा आपका इलम और है और मेरा इलम कुछ और है, और आप बनी इसराइल के पैगंबर हैं, आप मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे, इसका मतलब यही था कि आप मेरे नबी नहीं हैं और मुझ पर आपकी अताअत फ़र्ज नहीं है, मैं बहुत से कामों में आपकी मुखालफत करूँगा, आपसे ज़ब्त ना हो सकेगा, आप मुझ पर एतराज़ करेंगे, जिससे मालूम हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एक कौम के पैगंबर हैं, लेकिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर करम फरमाते और मुलाकात फरमाते तो हज़रत खिज़र को भी दीन मोहम्मदी की अताहत करनी पड़ती, حدیثی میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو ان کو ہماری اطاعت کرنا ہوتی. اب امت دو طرح کی ہے، ایک تو امت دعوت اور دوسری امت اجابت. جس کو تبلیغ تو ہوئی مگر اس نے قبول نہ کیا وہ امت دعوت کہلاتی ہے، اور جس نے قبول کر لیا وہ امت اجابت کہلائی. مسلمان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت ہے اور کفار و منافقین امت دعوت ہے. ہاں، چاہے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں یا نہ کریں، امت ضرور ہے. اللہ کے بندے سبھی ہیں، مسلمان بھی اور کافر بھی. مسلمان تو متی بندے ہیں اور کافر نافرمان بندے ہیں، مگر بندگی سے کوئی علیحدہ نہیں. اسی طرح چاہے لوگ احکام قبول کریں یا نہ کریں، امتی سبھی ہیں، سب پر آپ کی اطاعت فرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نہ تو عیسائی تھے نہ یہودی تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اور یہ حضرت بنی اسماعیل ہیں. ہاں، اول محمد تھے، بعد میں محمدی ہوئے، مسلمان ہوئے، کافر یا مشرق یا بت پرست نہیں تھے وہ. ہاں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین.
4: اور مسلمانوں، نماز صحیح وقت پر ادا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے. اور دیکھو، آپ اس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں FM 101.
5: This is FM 101.

जब भी देखते हैं पास से, खोया जैसे तुझको हाथ से, तुम जैसे रखने लगे रास मुझसे, पिछली मुलाकात में थोड़ा नाराज मुझसे।

0: Free socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101. 101.

जब भी देखते हैं पास से, खोया जैसे तुझको हाथ से, तुम जैसे रखने लगे रास मुझसे, पिछली मुलाकात में थोड़ा नाराज मुझसे, बात

0: And now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: आप सुन रहे हैं FM 101।

0: Now you're tuned into
1: FM 101.

सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: Big socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: अखजी में ही खुले फोन ते मेरे सब तो मैं पहला तेनू मैसेज करा तेरी क्यूट जी स्माइल देखा रे टुनाइट

0: शाम के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। ईमान वाहिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मैन्युफैक्चरिंग के तमाम शोबों में पैदावार की निगरानी का निज़ाम रवासाल मुकम्मल करने की हिदायत की है। नायब वज़ीर आज़म ने हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया है। पाकिस्तान और ब्राज़ील ने दो तरफा फौजी तआवुन मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया है। और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत की ज़ालमाना पॉलिसियां गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में आज़ादी की उमंगों को दबाने में नाकाम हो गई हैं।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, अबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर।

0: तेरा घर नहीं साथ हूं।
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों में कौमी मईशत को फ़रोग देने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म ने हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया है। पाकिस्तान और ब्राज़ील ने दो तरफा फौजी तआवुन मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: लेल नफस।

धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया।

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों में कौमी मईशत को फ़रोग़ देने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वजारतों और डिवीजन्स को बचत और किफ़ायतचारी के इकदामात पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: Late. Nafas.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी।

मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा और चुप।

ओके, अगर जनाब अगर इसकी साइकोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर बात करें या मेडिकल रिसर्च के ऊपर बात करें, तो इसके लिहाज से कोई अगर आप कहें मेडिकल या साइकोलॉजिकल रीजनिंग है, तो वो इसकी कोई साइकोलॉजिकल और मेडिकल रीजनिंग नहीं है। ठीक है, आप किसी के नाक से, किसी की आंख से, किसी के पेशानी से, किसी की ठोड़ी से या किसी की बनावट से कभी भी उसकी जिन्याती जो सबूत हैं उसके कि वो किस तरह से है या कैसा है, उसको आप 100% कभी भी नहीं जान सकते। अगर ऐसा होता तो इसके ऊपर मेडिकल बहुत काम करते हैं। तो ये बस एक मुशाहिदा है, और मुशाहिदा कभी कभार 50% एग्जैक्टली हो जाता है और 50% नहीं भी होता। सो इसको आपने बहुत ईजी लेना है, इसके ऊपर आपने 100% इक्तफा नहीं करना। बाज़ूकात कुछ चीज़ें 10% 20% जो है वो रिलेट कर जाती हैं, बाज़ूकात कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपका मुशाहिदा टोटली गलत होता है, आप उनको कुछ और समझ रहे होते हैं, और जब वक्त गुजारते हैं और जब कुछ लम्हे उनके साथ गुजरते हैं, जब वो बात करते हैं, तो आपको लगता है नहीं यार ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हाँ ये क्या मैंने क्या सोचा था, क्या परसेप्शन क्रिएट किया था। सो इसलिए जी मैं प्रोग्राम के शुरू में कह रहा हूँ कि इसको आपने बस ऐसा एज अ मुशाहिदा ही नोट करना है, और कुछ चीज़ें बस रिलेटेबल होती हैं और कुछ चीज़ों में कुछ सबूत नहीं होते, कुछ मेडिकल रीजनिंग नहीं होती उसकी, कुछ साइंटिफिक रीजन नहीं होती। हाँ, साइकोलॉजिकल रीजनिंग ज़रूर हो सकती है। साइकोलॉजिकल रीजनिंग में हमारी जो तासुरात हैं, एक्सप्रेशंस हैं, जो इंसान के मौजूदा जज्बात हैं, जैसे गुस्सा, खुशी, खौफ, इसका इजहार करते हुए नकूश ज़रूर बदलते हैं, और ये आपका साइकोलॉजिकल रीज़न है कि जब आप गुस्सा करते हैं तो डेफिनेटली आपको गुस्सा दिखता है चेहरे पे, आप खुश होते हैं तो खुशी दिखती है, और अगर आप उदास हैं तो उदासी दिखती है, अगर आप परेशान हैं तो आपकी परेशानी दिखती है, और अगर आप रिलैक्स्ड हैं तो आपके चेहरे से वो जो आपकी रिलैक्सनेस है वो भी आपकी दिखती है। सो इसलिए साइकोलॉजिकल रीजनिंग है इसकी, लेकिन मेडिकल और बायोलॉजिकल कोई रीजनिंग नहीं है। जैसे कि अगर आप खौफ में हैं तो आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, खुल जाती हैं।

0: अच्छा जना, वेलकम जी। और कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, और ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में कि आप किसी के बारे में राय कायम करते हैं और आप उसको समझते रहते हैं कि ऐसा है ये, और उसको समझने के ऊपर आप इतने ज़्यादा मुतमइन हो जाते हैं और इतना ज़्यादा आप उसके ऊपर बिलीव करते हैं कि आप उसके साथ उसी तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। फिर कुछ ऐसा एक इंसिडेंट होता है, या शायद आपकी उससे लड़ाई हो जाती है, या शायद कहीं आपके उसके साथ वक्त गुजारने का आपको मौका मिल जाता है, तो आपको एहसास होता है यार मैं तो बहुत गलत परसीव कर रहा था, ये जैसा दिख रहा था और जिस तरह से है ऐसा बिल्कुल नहीं है, और मैं बस वैसे ही करता रहा। ऐसा मेरी ज़िंदगी में बहुत बददफ़ा हुआ, बहुत बार हुआ कि ऐसे कुछ लोग जिनको मैंने बहुत एरोगेंट समझा और बहुत ज़्यादा ये समझा कि अपनी मैं में हैं, या मैंने उनसे फिर दूरी इख्तियार की, और काफ़ी सालों के बाद या काफ़ी अरसे के बाद जब कहीं अचानक से इंटरेक्शन हुआ और बकजाए मजबूरी इंटरेक्शन हुआ, तो पता चला कि यार ये तो बहुत दोस्ती वाला बंदा है, ये बहुत ख्याल रखने वाला बंदा है, और इसके साथ तो दोस्ती बहुत दूर तक चल सकती है। और वो जो मुझे एरोगेंस नज़र आ रही थी, वो उसका शर्मीलापन था यार। वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, वो इंट्रोवर्ट आदमी है, वो ज़्यादा बात नहीं करता, वो एक्सप्रेस नहीं करता। जो चीज़ें मुझे पसंद हैं वो वाली चीज़ें शायद उसको पसंद नहीं है, और जो उसको पसंद हैं वो शायद मुझे पसंद है लेकिन मैं उनको एक्सप्रेस नहीं करता, या जो मुझे पसंद है वो एक्सप्रेस नहीं करता। सो ये बहुत बार हमारी ज़िंदगियों में होता है, और जो लोग कम गो होते हैं, जो बात कम करते हैं, उनके बारे में जो परसेप्शन बनाते हैं वो हमेशा गलत साबित होती है, और जो हम सोच रहे होते हैं कि यार ये इस तरह से है वैसा नहीं होता, हमें बहुत मासूम दिख रहे होते हैं कम बोलने वाले लोग, लेकिन उनके अंदर ना एक बहुत ख़तरनाक इंसान छुपा होता है, और अगर आप उनके करीब होते हैं जब वो बोलते हैं एक्सप्रेस करते हैं तो आपको पता चलता है यार अच्छा इतने डेंजरस ख्यालात इस शख्स के कैसे हो सकते हैं जो कि इतना मासूम दिखता है। तो ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं, और कुछ लोग खुली किताब की तरह होते हैं, जो वो बोल रहे होते हैं वो वैसे ही दिखते हैं, और वो ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। और अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी को छुपा के रखना होता है और किसी को आप चाहते हैं कि एक्सप्रेस ना हो कि आप किस तरह के हैं, तो आपको फिर कम बोलना चाहिए, आपको कम इंटरेक्ट करना चाहिए, कम महफिलों में जाना चाहिए, आपको इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी रखनी पड़ती है। और अगर आप इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत राजदान हैं।
1: वो ही हिसाब तमन्ना है अभी।
0: जी जनाब, 0551-1111-0001 है राबते का नंबर, 920-2540 है राबते का नंबर। और पिछले प्रोग्राम में बहुत कॉलर्स ने गिला किया कि जी आपने हमारी कॉल शामिल नहीं किया, मिला मिला मिला के थक गए, हमारी उंगलियां दुख गई, उंगलियों में पोरे पड़ गए, 500 दफा मिलाई, 600 दफा मिलाई। तो आज मैंने एक उसका भी हाल निकाला है, वो हाल ये निकाला है कि आज मैंने फेसबुक पे पोस्ट नहीं लगाई कि जो लोग कमेंट कर देते हैं, और कॉल मैं शायद कमेंट्स में ज़्यादा वक्त गुजार देता हूँ, और फिर आपको लगता है कि यार हमारी जो कॉल्स हैं वो शामिल नहीं हुई, तो आज कमेंट्स वाला जो हिस्सा है ना वो भी कॉलर्स को मिलेगा, ठीक है ना। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल करने का मैंने प्लान बना रखा है।
1: खुद से अब एक जमाना हुआ जिसे
0: सो जनाब लेते हैं प्रोग्राम में पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है, कहां से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम,
2: मोहम्मद रजा बोल रहा हूं, मोटरवे पे हूं।
0: जी रजा साहब,
2: कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल ठीक ठाक हूं। आप ड्राइव कर रहे हैं रजा साहब?
2: बारिश काफी हो रही है, सी पैक पर हैं हम।
0: अच्छा, वेरी नाइस। सी पैक में किस जगह से हैं आप, इस वक्त कहां से गुजर रहे हैं?
2: ट्रंप इंटरचेंज है, कौन से हम गुजर रहे हैं अभी, मियां वाली के बाद आता है दाऊद खेल क्रॉस करके।
0: ओके, तो बारिश हो रही है, मजेदार बारिश हो रही है।
2: हो रही है जी, और आपके प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो नींद आ रही थी ना।
0: अच्छा अच्छा, तो आपने कहा कि आपने
2: फोन किया और अभी आपका नंबर देखकर आपको कॉल किया।
0: अरे वाह जी वाह, तो आप नाम क्या बताया आपने? रजा
2: जी, मोहम्मद रजा।
0: रजा साहब क्या करते हैं आप?
2: जी जी,
0: क्या करते हैं आप जिंदगानी में, क्या करते हैं? हेलो,
2: इटली होता हूँ, बाहर मुल्क से बाहर।
0: अच्छा, इटली में होते हैं, तो अभी आप पाकिस्तान आए हुए हैं?
2: जी जी, कुछ छुट्टी के आया हूँ।
0: अगर आप मुझे रेडियो पे सुनने की कोशिश करेंगे ना, फिर मेरी बात नहीं हो पाएगी आपसे, आप मेरे साथ फोन पे बात कीजिए।
2: सॉरी सॉरी, ठीक है। असल में बच्चे बच्चे हैं साथ में, तो उन्होंने कहा पापा की आवाज सुनते हैं।
0: अच्छा ओके, तो बेटा आप ना स्पीकर पे सुन लो पापा को, आप स्पीकर पे डालें। तो आप ड्राइव तो नहीं कर रहे ना रजा साहब?
2: नहीं नहीं, मैं साथ वाली सीट पे बैठा हूँ, कजन है जो ड्राइव कर रहा
0: है। अच्छा, कजन को बोलना है ध्यान रोड पे रखना है भाई।
2: जी जी जी बिल्कुल।
0: और बारिश में वाइपर भी तेज तेज चलाने हैं, हल्के नहीं चलाने।
2: बारिश बहुत तेज हो रही है और माशाल्लाह से मेरे ख्याल में मौसम चेंज हो रहा है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, मौसम ठंडा हो रहा है ना, तो अब मजा तो आ रहा होगा। बारिश भी हो रही है, रेडियो भी सुन रहे हैं, बच्चे भी साथ हैं और पूरी पूरी कजन भी साथ हैं। कजन दोस्त हैं अगर, तो दोस्त भी साथ हो, फैमिली भी साथ हो।
2: ये कजन भी है, मेरी वाइफ भी साथ में।
0: हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, वो कहते हैं ना दुश्मन और दोस्त दोनों साथ हैं, क्योंकि जो दोस्त होते हैं ना उनकी वाइफ बड़ी दुश्मन होती है। ऐसा है, भाभी भाभी से पूछे हैं, भाभी के दिल में छुरियां चल रही होंगी। अच्छा कजन को भी नाल ही लिया है।
2: असल में वो छोटा कजन है।
0: अच्छा,
2: अरे
0: वाह वाह, मतलब वो जो है ना वो देवर का किरदार अदा कर रहा
2: है। जी जी बिल्कुल।
0: वैसे देवर अच्छे होते हैं, सारे काम कर लेते हैं, सब्जी ला देते हैं, दूध ला देते हैं, हैं तो देवर भाभियों को अच्छे लगते हैं।
2: जी जी बिल्कुल, बिल्कुल।
0: ओके, तो भाईजान आपने प्रोग्राम में मौजू सुना है, टॉपिक सुना है?
2: नहीं टॉपिक नहीं सुना, अभी अभी ऑन एयर हुआ, क्योंकि वो अपना रास्ते में मौसम खराब था और कुछ आवाज आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी, अभी कुछ क्लियर हुआ तो आपके।
0: अच्छा
2: मैंने सुना।
0: अच्छा अच्छा रजा साहब, ऐसा है कि मैं आज जो पूछ रहा हूँ, चलें वो तो आपसे नहीं पूछता, मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसके बारे में आपने सोचा हो कि यार ये तो ऐसा है, लाइक जैसे अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं ना, तो आप एक मेरी तस्वीर कशी कर रहे होंगे कि यार ये जिससे बात हो रही है ये इस तरह का इंसान है, दिखता ऐसा होगा या ये इस तरह से होगा, सोशल है नहीं है, दोस्त है नहीं है, इसमें कुछ बुराइयां आपको दिख रही होंगी, कुछ अच्छाइयां दिख रही, तो आप एक तस्वीर कशी करते हैं एक इंसान के बारे में। इवन आपके सामने भी कोई शख्स होता है तो आप उसके बारे में भी तस्वीर कशी करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसकी तस्वीर कशी आपने की और आपको कुछ अरसे बाद पता चला हो कि यार आप गलत हैं, आप गलत साबित हुए?
2: जी जी, कुछ काफ़ी शरीफाना मिजाज के लोग होते हैं और बंदा उन पे अच्छा खासा एतमाद करता है, लेकिन जब कुछ वक्त इस तरह का आता है कि उनको हम आजमाएं या आजमाने के अलावा भी कुछ सिचुएशन इस तरह की बन जाती है, तो उनकी एक अलग से, यानी वो पसे आए ना कोई और है सामने साहब।
0: पसे आए ना कुछ और है। तो अच्छा सर ये बताएं, वो आपके माइंड में इस वक्त वो जो शख्स आ रहा है उसके बारे में बताइए। आप अगर उसका नाम नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल मत लीजिए, उसका रिश्ता नहीं बताना चाहते तो बिल्कुल मत लीजिए, आप मुझे बता सकते हैं कि यार वो मेरा कलीग था, मेरा दोस्त था, मतलब आप उसको ना मल्टीपल लोगों में रख के बता सकते हैं, और स्टोरी बताइए क्या स्टोरी हुई थी।
2: दरअसल हम इस्लामाबाद में रहते हैं।
0: हम
2: तो हमारे दोस्त थे काफी अच्छे, हम पत्नी यानी बिजनेस पे थे।
0: गवर्नर फैसल करीम कुंडी की ज़ेर सदारत। जी रजा साहब मैं सुन रहा हूँ आपको, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा रजा साहब की आवाज़ जो है वो चली गई है, आई थिंक सो वो मोटरवे पे हैं, तो मोटरवे पे जो है वो सिग्नल्स ड्रॉप होते रहते हैं। सो इसलिए रजा साहब फिर आपसे गुफ्तगू होगी जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और ये अक्सर होता है जी कारोबार के अंदर ना, बहुत ज़्यादा आपको डिचेस मिलते हैं और अक्सर दोस्तियाँ बहुत गहरी होती हैं, लेकिन जैसे ही पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना आपकी दोस्ती के अंदर, या आपका स्टेक इन्वॉल्व हो जाता है, फिर अगर आप ठीक भी हैं ना तो आप शायद बाज़ू का गलत साबित हो जाते हैं, या आप ठीक रहते नहीं हैं, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है वो सबको बदल देती है। और सबसे ज़्यादा अगर आप कहें ना कि आपके रिश्तों के अंदर जो दराड़ें पैदा होती हैं वो इस माली एतबार से ही होती हैं। अगर आप फैमिलीज़ के अंदर देखें तो भाई आपस में बहुत मोहब्बत से रहते हैं, बचपन से बड़े होते हैं, लड़कपन, जवानी, शादियाँ, और जैसे ही स्टेक इन्वॉल्व होते हैं, जब बांट होने लगती है, वालदैन की जायदाद बांटी जाती है, या आपका स्टेटस, क्योंकि एक घर के अंदर अगर तीन भाई हैं, चार भाई हैं, तो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि चारों सेम स्टेटस के हों। किसी को रब बहुत अता कर देता है, किसी को थोड़ा नीचे रख देता है, किसी को और थोड़ा नीचे रख देता है, तो वहाँ से दुश्मनियाँ बड़ी शुरू होती हैं, कि जो सबसे नीचे वाला होता है ना वो बड़े भाई के साथ उसकी जेलसी वैसे ही शुरू होना शुरू हो जाती है। बड़ा भाई दयालु होता है, और जब दयालु होता है और छोटे भाई को लगता है ये कम दयालु है, और जब छोटा भाई रिएक्ट नहीं कर रहा होता या दे नहीं रहा होता या उस तरह की मोहब्बत प्यार नहीं कर रहा होता, तो बड़े भाई को भी फील होना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात बड़े भाई बड़े कंजूस हो जाते हैं, छोटा भाई ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि यार दौलत तेरी तेरे पास है, जो भी है वो अलग है लेकिन हमारी भाई बंदी तो है ना। लेकिन बड़ा भाई बाज़ औक़ात स्टेटस कॉन्शियस हो जाता है कि नहीं यार ये तो मेरे मुकाबले का ही नहीं है। एक ही माँ के बच्चे एक दूसरे को मुकाबलाबाजी पे आ जाते हैं। फिर बच्चों की आपस में जब आपके इंट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है तो रिश्तों के ऊपर बड़े एतराज़ात उठते हैं कि अच्छा यार मुझे तुम्हारी बेटी से रिश्ता करना है, और बड़ा भाई कहता है कि नहीं यार मेरा तो स्टेटस डिफरेंट है, मैं तुम्हारे बेटे को क्यों रिश्ता दूँ। और छोटे भाई से अगर मांग लिया तो छोटा भाई कहता है कि नहीं यार बेटी नहीं मान रही है कुछ, तो उसकी वजह से भी बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। फिर बच्चों के कैरियर के ऊपर बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि अगर बच्चा जो है वो छोटे भाई का बच्चा या दरमियाने वाले भाई का बच्चा बच्ची जो है वो आगे चला गया है, तो बड़े वाले भाई के बच्चों को जेलसी होती है, वो अपने बच्चों को कहता है देखो उसने पढ़ लिया, उसने आज ए ग्रेड लिया, उसने इतने मार्क्स लिए, तुमने नहीं लिए, तुम हमेशा मेरा नाक कटवाते हो या कटवाती हो। सो ये बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा लग रहा होता है कि यार ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी नॉर्मल सी हैं लेकिन वो बहुत बड़ी बन जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं और फिर हमें एक दूसरे से जुदा कर देती हैं। और एक बड़े मज़े की बात है कि बाज़ औक़ात ये जुदा होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, अगर आप इसको समझें तो ये बड़ी समझने वाली बात है कि इंसान की ज़िंदगी में, ख़ासकर जो आजकल का दौर चल रहा है और जो आने वाला दौर है, क्योंकि वक्त के साथ साथ ज़िंदगी बड़ी स्पीड अप होती चली जा रही है और आपको बहुत सारी चीज़ों को पूरा करना होता है, और टाइम आपके पास वही है, टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम्स वही होता है, और उसको आप जहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से आपको रिटर्न आ रहा होता है। तो फिर जब आपके पास वक्त कम बचता है ना, तो फिर आपके साथ अगर ज़्यादा रिश्तेदारियाँ हों, ज़्यादा आपका सोशल सर्कल हो, या ज़्यादा आपने कहीं अपना वक्त देना है, तो आप अपने कैरियर के ऊपर फोकस नहीं हो सकते, या आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे होते। तो अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चलती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपके पुराने रिश्ते जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जब 30s में हम आते हैं तो हमारे जो जो बहुत सारे घरों में ऐसा होता है जो चाचा का रिश्ता होता है, ताया का, फुप्पो का, वो रह जाता है, लेकिन जो चाया ताया चाचा या फुप्पो के जो कज़न्स होते हैं वो कहीं फेड आउट हो जाते हैं। और फिर जब आपके कज़न्स होते हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप शायद कि थोड़ा बहुत होता है, और आपके जो कज़न्स के वालिद हैं ना उनके साथ रिश्ता फेड आउट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी आगे नई रिश्तेदारियाँ बनना शुरू हो जाती हैं जहाँ शादियाँ होती हैं, फिर आपके बच्चों के इंटरेक्शंस, फिर स्कूल फेलोज़, तो या एक शहर को छोड़ के आप दूसरे शहर में गए तो आपके मोहल्लेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि आपका नया मोहल्ला बन चुका है। तो ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फेड आउट होती हैं और उनकी कोई ना कोई रीजनिंग बनती है, या तो माली एतबार से, या कहीं ना कहीं हमारा कोई जेलसी फैक्टर होता है, या कहीं किसी जगह कैरियर फैक्टर होता है, कोई ना कोई फैक्टर ऐसा ज़रूर होता है जो हमें एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता दूर करना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो आप उन लोगों के साथ जिनके साथ रोज़ाना उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनके साथ आपका बड़ा एक क्लोज कनेक्शन बन जाता है और आपको लगता है कि ये कनेक्शन सारी ज़िंदगी चलेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप नई किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं वहाँ नई चीज़ें बनती हैं, नए दोस्त बनते हैं, नए इंट्रैक्शन बनते हैं, तो आपके पास जो आपके दिमाग में या आपकी लाइफ के अंदर जो सीटें हैं ना वो फिल अप हो जाती हैं, और उनकी एक लिमिट है, और उस लिमिट से जब एक्सीड करती हैं चीज़ें तो अल्लाह का कानून ऐसा है या अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि वो पहले वाले लोग जो हैं वो फेड आउट होना शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से निकलना शुरू हो जाते हैं और नए लोगों को जगह मिलना शुरू हो जाती है। सो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन आप जिसके साथ भी रहें कोशिश ये करें कि जो वक्त भी आप गुजारें उस वक्त के अंदर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर हो कि जो उसको याद रहे, और अगर वो याद रहे तो वो अच्छे लफ्जों में याद रहे, कहीं वो आप बुरा ना करके जाएं किसी के साथ। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं और उसके बाद गाना सुनाते हैं आपको। आए हाय हाय, रेडियो सेट ऑफ करिएगा मेरे भाई।
2: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम सलाम, कौन है, कहाँ से हैं? शमरेज अख्तर बात कर रहे हैं सराय आलमगीर से। जी शमरेज साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह के बहुत करम है, आप बताइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शमरे साहब। जी
2: सर, एक मेरा दोस्त था वो, उसके बारे में मेरे कुछ ख्याल कुछ और थे, जब कुछ वक्त गुजरा तो फिर एक
3: के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ सर, जो ना आपको ना मैं उसकी थोड़ी सी ना
0: अच्छा अमरेश साहब मैं आपकी बात समझ गया हूँ, सिर्फ मेरे दो सवालों का जवाब दीजिएगा। आपके उस दोस्त के माली हालात बेहतर हुए हैं और उसके बाद आपकी उसके साथ दोस्ती कम हो गई है, वो आपको उस तरह से वो वैल्यू नहीं दे रहा, लाइक ऐसा ही है? अच्छा ओके, मैं इस बात पे बात करता हूँ, आपने इसको बड़े बगौर सुनना है क्योंकि मैं दोनों एंगल्स बताऊंगा आपको, ठीक है
3: जी।
0: वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। जी जनाब, शमरेश साहब कह रहे थे जी कि मेरे एक दोस्त हैं और जब बचपन में या जवानी में जो भी हमारा एक एज का टेन्योर था उसके अंदर जब हमारी दोस्ती थी बहुत गहरी थी, सुबह शाम हम इकट्ठे रहते थे, सुबह शाम हम खाते पीते थे, फ़ोन पे बात करते थे, जहाँ कहीं जाना आना होता तो उसकी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम मेरा था। तो मैं एक तो पहले तो शमरेश साहब मैं उसके एंगल से बात करूँगा जो आपका दोस्त है एक्स वाई जी जो भी है। एक तो यह है मैं आपको बताऊँ कि जो दौलत कमाना है ना, जो आपने पैसा कमाना है या आपकी ज़िंदगी में माली एतबार से जब आप अमीर होते हैं तो उसकी कोई ना कोई कीमत आप ज़रूर अदा करते हैं, विदाउट एनी आप कहें ना स्ट्रगल और विदाउट एनी हार्ड वर्क आप कभी भी दौलत नहीं कमा सकते, आपको कुछ ना कुछ कुर्बान ज़रूर करना पड़ता है। बाज़ औक़ात आपको सेहत कुर्बान करनी पड़ती है, बाज़ औक़ात आपको रिश्ते कुर्बान करने पड़ते हैं, बाज़ औक़ात आपको वक्त कुर्बान करना पड़ता है, और वक्त सबसे ज़्यादा अहम और ख़ास होता है कि जो हम कुर्बान करते हैं। सो होता यह है कि हम सभी लोग दौलत कमाना चाहते हैं, हम सभी लोग अपने हालात को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी को, क्योंकि अल्लाह ने रिस्क और नसीब जो है वो अल्लाह ने लिख रखा होता है, और जितना नसीब में रिस्क लिखा होता है वो उसने हासिल करना होता है और अल्लाह ने उससे काम लेना होता है। और तो जब कोई शख्स आगे बढ़ जाता है या उसको कहीं दौलत के एतबार से आगे बढ़ता है तो उसने कहीं ना कहीं वक्त देना होता है, काम करना होता है, कोई ना कोई चीज़ पे ऑफ करनी होती है। तो जब वो वक्त दे रहा होता है ना तो उसके पास वक्त कम हो जाता है, एक तो बात ये होती है। दूसरा ये होता है कि उसकी इंगेजमेंट्स बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ वो वक्त दे रहा है वहाँ उसका माइंड जो है वो कनेक्ट हो चुका है, और जो उसके पहले आपके उसके पास वक्त बाकी था, बहुत ज़्यादा इजाफी वक्त था, तो वो अपने उन दोस्तों के दरमियान वो वक्त गुजारता था। अब उसने काम करना होता है, तो जब वो काम करता है तो उसकी उसकी जो बॉडी कैपेसिटी है या उसकी माइंड कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो उससे वो इरीटेट होना शुरू हो जाता है कि यार अच्छा ये वाली दोस्ती इसको अगर मैं साथ लेके चलूंगा यार तो वक्त में कैसे निकालूंगा, या उतना वक्त आपको नहीं दे पा रहा होता। और फिर हम उसको महसूस कर रहे होते हैं यार अच्छा इधर को पैसे आगे में होने दे सू मत ही नहीं लाना, ठीक है ना। तो वो हमारी परसेप्शन होती है, एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि बाज़ लोगों के अंदर जब दौलत आ जाती है ना तो वो कहते हैं ना वो जवानी दी गुत्थी च रुपया पै गया, ऐसा भी होता है, मैं इस बात को भी डिनाई नहीं करता कि कुछ लोगों के पास जब दौलत आ जाती है या जब वो ऊपर चले जाते हैं, जैसे मैंने पहले बात की कि कुछ भाई स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं, तो ये दोस्त भी हमारे भाइयों की तरह ही होते हैं कि जो स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं फिर वो कहते हैं नहीं यार ये वाला जो दोस्त है ना इसके साथ तो बस वक्त बर्बादी है, इससे कुछ पैसों का फ़ायदा तो होना नहीं है, क्योंकि लालच भी बढ़ जाता है, जैसे जैसे आपके पास दौलत आती है वैसे वैसे आपका लालच बढ़ता रहता है, और फिर आपको लगता है यार ये फजूल मेरा वक्त गुजारी है या मेरा फजूल टाइम है जिस पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने पहले बात की कि वक्त बहुत कीमती होता है। सो आप उस एंगल से देखिए कि आप किसी भी गिला मत कीजिए, अगर आपके साथ कोई अच्छे वक्त में आपके साथ है अच्छा वक्त गुजारिए, और अगर वो आपकी ज़िंदगी से चला गया है अपनी ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ गया है तो उसको जाने दीजिए, आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस कीजिए, अपने रास्ते पर फोकस कीजिए। और जब हम इस ज़िंदगी की दौड़ में दौड़ रहे होते हैं ना तो कोई थोड़ा सा स्पीड मार के आगे निकल जाता है, कोई हल्का रह जाता है, किसी का रास्ता दाएं जानेब हो जाता है, किसी का बाएं जानेब हो जाता है, हमने अपने रास्ते पे कायम रहना होता है और अपनी स्पीड के साथ चलना होता है और अपनी बॉडी के मुताबिक अपनी स्पीड को बढ़ाना होता है, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपनी स्पीड को बढ़ाना होता है। सो आप इसको इस एंगल से लीजिए कि आपका दोस्त जो है वो कहीं शायद बिजी हो गया हो या उसके पास वक्त बहुत कम हो गया हो, उसकी ज़िंदगी में बहुत मसाइल डेफिनेटली मेरे भाई होंगे, ऐसा नहीं होता कि दौलत आ जाए तो ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, मसाइल ज़िंदगी में कॉन्टीन्यूसली रहते हैं, सिर्फ उनकी शक्ल और हियत चेंज हो जाती है, उसके मसाइल शायद कुछ और हो गए हों। दौलत वाले मसाइल जब कभी वो कुछ ही उसको लगता था कि वो बाज़ार जा रहा है और कोई चीज़ उसने ख़रीदनी थी, अब उसको ख़रीदने की सलाहियत उसके पास है लेकिन उसके पास शायद वक्त नहीं है, अपने दोस्तों के साथ बैठ के कुछ दो चार गप्पे लगाने का वक्त नहीं है, उनके साथ खाना खाने का वक्त नहीं है, कहीं गाँव दोबारा आने का वक्त नहीं है। तो ये चीज़ें इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग्स कि आपकी ज़िंदगी में होती हैं, जब कभी भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, बदल जाता है, तो आपकी सोच भी बदलना शुरू हो जाती है। सो ये नॉर्मल है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आप उसकी जगह होते तो शायद आप भी वैसे ही होते। आपको लगता है कि आप वैसे नहीं हैं और वैसे ना होते, लेकिन मेरे भाई आप वैसे हो जाते।

0: ओके जनाब, वन इंटरनेशनल आप सुन रहे हैं, 12:50 हुए चाहते हैं, आज 13 अक्टूबर है 2026 है, आज की भी आपके साथ है, नेक्स्ट कॉलर भी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है रिमशा, कैसी हो? जी देखो, और मैंने आज ठक से आपका नाम भी ले लिया, पहचान भी लिया आपको, इस पे तो आपने रिएक्शन ही नहीं दिया। ओके, तो कितनी दफा कॉल मिलाई थी आपने? अच्छा 255, 255 को नंबर होता है यार, 555 मिला हो तब भी मैं सोचूं, 1055 मिला हो तब भी कुछ कुछ रहम आए मुझे। हाँ हाँ, अंगूठा साथ नहीं देता तो अंगूठा नया लगवा लो। अंगूठे की तो, अंगूठे की तो बड़ी गेम है भाई, अंगूठा ही तो है जिंदगी में बस, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। चलो अब आपके अंगूठे ने चला लिया काम, तो बताइए क्या कहने आई है ऐसा? ये आपकी मर्जी है।
1: चलो मैं अपने, मतलब मैं अपने हस्बैंड के बारे में बताती हूँ। मैं जैसे उनको पहले समझती थी, मैं उनको समझती थी कि वो नरम लहजे वाले होंगे, वो सख्त लहजे के नहीं होंगे जिस तरह मैंने समझती थी। लेकिन मैं ये नहीं समझती कि मेरे मामले में ये कभी नहीं बोलेंगे, ये सख्ते वाले नहीं होंगे, किसी से बहस नहीं करेंगे, किसी से लड़ाई करने वाले नहीं होंगे, कभी मैंने उनका वो रूप देखा ही नहीं था। लेकिन मैं देख के आराम बताती हूँ, अगर मुझसे कोई बात करे या कोई ऐसी फजूल बात करे, गर्म हो जाते हैं, इतना गुस्सा आ जाता है उनके, वो अपनी उसमें नहीं रहते।
0: अच्छा, तो आपकी वजह से लोगों से नाराज हो जाते हैं?
1: मुझसे नहीं, मेरी वजह से नहीं, लेकिन अगर मुझ पे कोई ऐसी बात करे तो वो बर्दाश्त नहीं करते, या उन पे कोई ऐसी बात करे तो वो बर्दाश्त नहीं करते।
0: अच्छा, तो आपको लगता था कि ऐसा नहीं था, अब है?
1: ऐसा नहीं है, मैं समझती थी कि वो शायद ना, मतलब कोई लड़ाई होगी तो वो रफा दफा करेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन वो मतलब
0: चलो बस, शोहरों की ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं रिमशा, जो आपको पहले नहीं दिखती बाद में दिखती हैं। हाँ लेकिन, लेकिन हाँ ऐसा है कि ख्वातीन के भी चेहरे बहुत से होते हैं ना, उनकी भी बहुत सारे चेहरे बाद में दिखते हैं, पहले नहीं दिखते हैं। दूर दूर जब आप रहते हो ना, तो आपको, मैंने आपको पहले भी बताया ना, आप किसी के साथ सफ़र करें, खाना खाएं, वक्त गुजारें, तभी आपको पता चलता है कि सामने वाला शख्स कैसा है। अगर आपकी छोटी मोटी मुलाकात है या ऑनलाइन आपकी फ़ोन कॉल पे बात हो रही है, सो आप बड़े डिफरेंट होते हो, लेकिन जब आप वक्त गुजारते हो ना, और जैसे जैसे आप वक्त गुजारते चले जाते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर की हिडन जो चीज़ें हैं ना, वो आहिस्ते आहिस्ते एक्सप्रेस होना शुरू हो जाती। तो अब आप वक्त गुजार रही हैं उनके साथ, तो आपको पता चल रहा है कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है, एक्चुअली है क्या। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी में हिडन होती हैं, जो वो छुपा के रखता है। आज भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो छुपी हुई होंगी उनकी, वो वक्त के साथ साथ आपको पता चलेगा।
1: लेकिन भाई ऐसे कुछ आपको लगता नहीं है कि ऐसे कुछ जो होते हैं सास ससुर, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक लड़की को देखने आते हैं, वो बड़े मीठे होते हैं, बाद में उनका रहन सहन देख के पता चलता है कि ऐसे वो होते क्या?
0: देखिए वो ये फिर वही बात है ना, कि जब आप उनके साथ रहते हो तो फिर आपको पता चलता है ना। और दूसरा ये भी होता है कि हम कुछ रिश्तों को या कुछ लोगों के एटीट्यूड को खुद डेवलप करते हैं, हम जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से, क्योंकि देखें रिमशा होता ही है ना कि हर इंसान के जिस्म के अंदर एक अलग दिल और दिमाग है, ठीक है, उसके अपने पसंद नापसंद, लाइक्स डिसलाइक्स और सब चीज़ें अलग अलग हैं। लाइक अगर आपको भिंडी पसंद है तो शायद मुझे दाल माश पसंद हो, हैं, तो आपके, आप घर में भिंडी बनाएं और रोज़ाना भिंडी बनाएं, और मुझे भिंडी से सख्त नफरत हो और मैं हूँ बहुत अच्छा इंसान, लेकिन आप रोजाना भिंडी बनाएंगी तो मैं एक ना एक दिन इरिटेट हो जाऊंगा, और आप कहेंगे अच्छा तुम्हें भिंडी पसंद क्यों नहीं है भाई, मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है। तो हर इंसान के जज्बात, एहसासात, उसकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है, और जब हम अपनी पसंद थोपने की कोशिश करते हैं ना, चाहे वो सास ससुर की तरफ से हो, या बहुओं की तरफ से हो, या शौहर की तरफ से हो, या बीवी की तरफ से हो, या कोई भी रिश्ता आपकी ज़िंदगी में ऐसा है, जब हम दूसरे की पसंद के ऊपर अपनी पसंद को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं ना, वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है। और जब हम किसी दूसरे से कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं ना, और फिर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती ना, तो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। लाइक में अगर बहुत सारे सास ससुर ऐसे होते हैं जो अपनी बहुओं से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कि यार अच्छा वो कहीं जाए तो मुझे पूछ के जाए, वो सुबह उठे तो सबसे पहले यहाँ आए, जब ससुर आए तो वो खड़ी हो जाए, हाथ बांध के खड़ी हो जाए, वो इस तरह के ना रिस्पेक्टफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं। बस ख़वातीन इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती हैं, कहती यार ये क्या मजाक हो, मैं तो अपने अब्बू के सामने कभी खड़ी नहीं हुई, कभी उनके उनका हमने इंतज़ार नहीं किया, पहले खाना उनको नहीं दिया हमने खा लिया। देखिए आपके घर का माहौल डिफरेंट है, उनके घर का माहौल डिफरेंट है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस
1: बिल्कुल
0: तरह की
1: सही है,
0: चीज़ें,
1: लेकिन टलने में थोड़ा टाइम लगता है, समझते हैं टाइम लगता
0: हाँ
1: है।
0: हाँ तो ये बात है, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि दूसरों को वक्त देना चाहिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए। आप अगर बहू लेके आए हैं तो उसको भी अंडरस्टैंड कीजिए कि यार वो एक नए माहौल से आई है, उसके घर का जो माहौल है थोड़ी बहुत बातें उसकी जो अच्छी हैं वो आप उसको अडेप्ट कर लें। वो थोड़ी बहुत बातें उसे बताएं कि बेटा इस घर में ऐसा चलता है, अगर तुम अपने आप को मोल्ड कर लो, थोड़ा सा वक्त है तुम्हारे पास तो अच्छा रहेगा, हम आप एक दूसरे के साथ जलन हो जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता इंसान जलन हो ही जाता है, लेकिन वो जो जलन होने का जो टाइम होता है ना, जो शुरू का टाइम होता है, उसमें हम इतना बिगाड़ पैदा कर लेते हैं कि वो जलन हम हो ही नहीं पाते। फिर हम उसमें दुश्मनियाँ शुरू हो जाती हैं। अच्छा सास नहीं कि बहू कहती है, अच्छा मैं भी ना तुम छड़ांगी नहीं, मैं बताऊंगी तुम्हें कि मैं भी परवीन की बेटी हूँ।
1: लेकिन अभी आपने भाइयों की बात की ना, भाई यहाँ पे हमारे मोहल्ले में भी ऐसा ही हुआ कि
0: हाँ बस अभी अभी
1: एक भाई
0: ऐसा है
1: का
0: ना
1: ना, मतलब
0: रिमशा,
1: ऐसा गर्म किया,
0: रिमशा
1: नहीं ये घर मेरा ही
0: रिमशा
1: बेटा
0: सुनो
1: है, तो एक
0: ना,
1: कहीं ना उसके सर
0: और
1: पे मेरे बाबू की
0: रिमशा,
1: दर्द हो गई।
0: हेलो रिमशा,
1: जी
0: रिमशा अल्लाह हाफिज,
1: भाई चाय पे रुकना दे।
0: अल्लाह हाफिज, बहुत टाइम हो गया आपके साथ ना, लंबी कॉल चल गई, अल्लाह हाफिज। लेकिन वक्त होता है बहुत कम, वक्त जिंदगी में भी बहुत कम होता है। जो भी वक्त आपको मिल जाए ना उसको बेस्ट यूटिलाइज कीजिए। हर जिंदगी के हिस्से के अंदर आपके पास जो वक्त होता है वो बहुत कीमती होता है, और उस वक्त के अंदर ही आपने वो चीज़ हासिल करनी होती है। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं तो आपके पास पढ़ने का वक्त नहीं बचता भाई। और फिर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं तो कमाने का भी वक्त होता है। 50 साल के बाद फिर आप अपनी बीमारियों से लड़ते हैं, फिर आपके पास कमाने का वक्त नहीं होता, एनर्जीज नहीं रहती। इस तरह ज़िंदगी में हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, और मेरे प्रोग्राम में भी कॉल का एक वक्त होता है रिमशा, उस वक्त को आपने बेस्ट यूटिलाइज करना है। ओके जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी, नेक्स्ट कॉलर है, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्यानी साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ क्यानी साहब।
2: क्या जुम्मे का प्रोग्राम आप आदर अली सैयद साहब को दे रही है? पिछले
0: नहीं, मैं जुम्मे का प्रोग्राम करता हूँ, मैंने किया था प्रोग्राम जुम्मे का,
2: जुम्मे तो नहीं आया आप?
0: नहीं मैं आया था क्यानी साहब, आप भूल रहे हैं।
2: जी नहीं, मैंने आदर अली सैयद को सुना, आपको तो नहीं सुना,
0: क्यानी साहब
2: थोड़ा बहुत आप
0: आपने आपने
2: आज ना फिर
0: मुझे
2: हो सकता है आए हों बाद में, लेकिन
0: नहीं
2: स्टार्ट प्रोग्राम तो आदर अली सैयद साहब ने किया था।
0: नहीं क्यानी साहब आप मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए थे बाकायदा।
2: मैं ये पिछले इस जुमे की बात कर रहा हूँ
0: जी,
2: जो
0: मैं इसी
2: गुजर गया
0: जुम्मे
2: अभी।
0: की बात कर रहा हूँ कि आप इस लास्ट वाले जुम्मे में आप आए थे, और प्रोग्राम में कॉल भी की थी आपने, और मैंने चेहरा शनासी टॉपिक रखा हुआ था, उसी को कंटिन्यू किया आज भी, आप भूल रहे हैं।
2: या फिर पिछला जुमा आतर अली सैयद ने किया होगा, ये
0: अच्छा पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन
2: एक
0: कल
2: जुमा आपने मिस किया, ये या पिछला, मुझे ये नहीं पता।
0: नहीं, मैंने तो रेगुलर कर रहा हूँ प्रोग्राम, पिछले तो आई थिंक सो रेगुलर प्रोग्राम चल रहे हैं। भूल रहे हैं आप?
2: अच्छा, हाँ शायद हो सकता है, हो सकता है,
0: जी जी
2: हो सकता है।
0: जी जी
2: तो आपने जो बात की ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी, जवानी अली को टीचर पिया पा देता,
0: अच्छा
2: क्या बात है, क्या पैमाना।
0: आपको लगा होगा कि भाई खुर्रम जो है ना वो बहुत पुराने लोगों में से हैं।
2: नहीं, मुझे इस पर एक शेर याद आ गया, मैं हमेशा ये शेर पढ़ता रहता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है ये, कि किसी के जर्फ से बढ़कर न कर मेरो वफा हरगिज़, किसी के जर्फ से बढ़कर न कर मेरो वफा हरगिज़, ये बेजा शराफत बड़ा नुकसान देती है।
0: आय हाय हाय हाय हाय,
2: तो ये जवानी गुत्थी का मतलब ये है कि एक चीज की जर्फ ये है कि उसमें 4 आने आते हैं, तो आप अगर उसमें 12 आने या 1 रुपया डालो तो नहीं आएगा, तो गिर जाएंगे,
0: बिल्कुल
2: उनका
0: ऐसा।
2: पैमाना ये है कि उसमें 4 आने आते हैं। तो इस तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें प्यार मोहब्बत और उसका एक हद होती है, उससे अगर बढ़कर उन्हें दिया जाए ना, तो फिर वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, मोहब्बत को प्यार को बर्दाश्त नहीं करते। जी
0: ऐसा ही है, ऐसा ही कहनी साहब, लेकिन देखें
2: प्यार मोहब्बत और उसका एक हद होती है, उससे अगर बढ़कर उन्हें दिया जाए ना, तो फिर वो नहीं बर्दाश्त। हम्म,

0: हम परसीव करते हैं। लाइक अगर मैं एक जुमला कहा है ना, जैसे आपको एक जुमला पसंद आया है, वो बहुत सारे लोगों को शायद समझ भी ना आया हो या शायद पसंद ना आया हो, ठीक है। ये जो नापसंद और पसंद वाली चीज़ है ना, और जो चीज़ें परसीव करने की क्वालिटी है या जो अल्लाह ने हमारे अंदर पैदा किया है, ये भी रब की कारीगरी है। हम इंसानों के, हम इंसानों के बस में अगर हो ना, तो हम सारे लोग ही अच्छे बन जाएं। मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर इंसान मुझसे प्यार करे। दुनिया कौन चाहता है कि दुनिया का कोई शख्स उससे नफरत करे? अगर मतलब मैं अगर यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग ही मेरे मेरे से मोहब्बत करें, मैं किसी से नफरत नहीं चाहता। और दुनिया का जो सबसे बुरा इंसान है ना, उससे भी अगर पूछा जाए तो वो इस चीज़ से नफरत करता है कि यार मुझे लोग बुरा क्यों जानते हैं। लोग यही चाहते हैं कि लोग उसको अच्छा चाहें, लेकिन उससे ऐसा हो जाता है कि लोग उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस हर इंसान को अल्लाह ने वो मोहब्बत वाला आर्ट नहीं सिखाया होता, ठीक है ना। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें भी बस सिर्फ रब से दुआ करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि या अल्लाह तू हमें अच्छा बना, हमें बुरों की लाइन में खड़ा मत कर, हमें अच्छों की लाइन में खड़ा कर। लेकिन इस दुनिया में अगर बुरे नहीं होंगे ना कैनी साहब, तो तब भी इस दुनिया का निज़ाम ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये
1: बुरे
0: इम्तिहान है
1: नहीं
0: ना।
1: होंगे तो अच्छे का कैसे एहसास होगा।
0: हाँ, ये जाए इम्तिहान है। जैसे कि अगर आपको प्यास नहीं है, तो पानी की खूबसूरती का या पानी के सुकून का आपको एहसास नहीं होना, पानी की अहमियत का एहसास नहीं होना आपको।
1: तो खुशी का एहसास कैसे होगा।
0: बिल्कुल कमाल बात है। तो गम का होना बहुत ज़रूरी है, बुरों का होना भी बहुत ज़रूरी है, और अच्छों का भी। और जो बुरे हैं ना, वो भी इस दुनिया में, इस इकोसिस्टम में, इस निज़ाम में अपना किरदार निभा रहे हैं। और अगर अल्लाह ने उनको बख्शना होता है ना, या अल्लाह के वो महबूब होते हैं, तो कहीं जाके अल्लाह उनसे कोई एक आध अच्छा काम कराता है, कहता है सारे तेरे बुरों के ऊपर पानी, भाई ये एक अच्छा मैंने ले लिया। तो ये बस उसकी सिलेक्शन है, ये जिसको अल्लाह जहाँ सेलेक्ट करता है, जिस जगह पे रखता है, ये उसकी कारीगरी है, उसका कमाल है।
1: अच्छा एक बात जिम्मन आ गई है, पता नहीं ये बात ठीक होगी या नहीं, लेकिन
0: जी
1: मैडम जो है हमारी मैडम
0: जी जी जी
1: देखे सारी जिंदगी उन्होंने मतलब तकरीबन ये मौसीकी में गुजारी है ना।
0: जी
1: और फिर कई लोग ये कहते हैं जी वो ये मतलब ये जो मौसीकी है मौसीकी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि देखिए जब उनकी मौत कैसे हुई रमजान में और 27वीं रात में, तो फिर उसको अगर देखें तो देखा वो तो मतलब हम लोग ये कहते हैं कि रमजान में या 27वीं रात में या बल्कि जुमे वाले दिन जो है उस दिन भी अगर तो फौत होना उसका कब्र का उस पे अजाब नहीं होगा। तो
0: बस
1: कब्र
0: कहनी
1: के
0: सर।
1: अजाब से तो सबसे मेन चीज ही कब्र का अजाब है जो शुरू होगा,
0: जी
1: तो इस तरह समझा जाता है। तो बस वही बात आ गई ना कि अल्लाह क्या पता किसी को कितना पसंद करता है
0: बस
1: और
0: ये कहनी साहब
1: उसके कौन सा गुण उसको पसंद है।
0: बस बात खत्म।
1: हम लोग तो बस जहरी तौर पे देखते हैं, जी ये दाढ़ी रखी हुई है, जी सर पर मेहराब है, जी माथे पर मेहराब है, जी ये इबादत कर रहा है। वो रब जानता है कि वो उसको कैसा किस तरह किस पैमाने में रखा हुआ है अल्लाह
0: देखें
1: ताला ने।
0: क्या नहीं साहब, हमारे पास तो हमारी शरीयत में सबसे बड़ी मिसाल है ना इबलीस की, कि इबलीस ने कई हजारों सदियों जो है वो रब की इबादत की और एक सज्दे से इनकार किया, ठीक है। वो अल्लाह ने उस बुराई को पैदा किया, वरना इबलीस की जरूरत थी कि वो सजदा ना करता, ठीक है। ये अल्लाह ने हमें, हमारे लिए एक इम्तिहान पैदा किया कि अगर वो बुराई पैदा ना करता रब, तो आज हमारी अच्छाई या हमें इम्तिहान में कैसे डालता। जी बस बात खत्म। जी, तो बस ये अल्लाह का निज़ाम है, उसकी कुदरत है। बस हमें रब से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस आजमाइश में ना डालना, कि जहाँ तू हमें बुरों में उठाए, ठीक है। बहुत शुक्रिया कैनी साहब, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।

0: جی جناب، ویلکم بیک ونس اگین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید پروگرام میں. اور اٹس این آنر ٹو می جی کہ میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ راجہ حبیب کشمیری موجود ہیں جی. اور راجہ حبیب کشمیری صاحب جو ہے وہ پروگرام میرا سن رہے ہیں. اور راجہ حبیب کشمیری صاحب جو ہیں وہ لائن پروڈیوسر اور پروڈکشن مینیجر تقریباً پاکستان کے تمام بڑے میڈیا پروڈکشن ہاؤسز کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. اور جب کبھی ہم آپ کو کہیں اسکرین پہ دیکھ جاتے ہیں، کسی ڈرامہ میں، کسی بھی جگہ پہ، تو وہ راجہ حبیب کشمیری صاحب ہی ہیں جی، جو ہمارے لیے وہ کہتے ہیں مشہر کا کام سر انجام دیتے ہیں. تو راجہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ اس وقت اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال رہے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں. اور راجہ صاحب جو ہے وہ ایک اور کام بھی کرتے ہیں جی. راجہ صاحب یہ کرتے ہیں کہ گوجری میں، پہاڑی زبان میں بلکہ، پروگرام بھی کرتے ہیں. ارے واہ راجہ صاحب، بڑا میں سنتا ہوں آپ کو، جب دیکھتا ہوں نا بڑا مزہ آتا ہے کہ آپ اپنے علاقے کے لیے، اپنی جگہ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور آپ کی جو سینس ہے، جو آپ کے روٹس ہیں، اس کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں. تھینک یو سو مچ جی راجہ صاحب. اور آج کا جو ہمارا ڈرامے کا سین تھا جی، وہ ہم نے دیکھا ہے راجہ صاحب، بہت شکریہ. بس ہماری بیل کرا دیجیے گا پھر. السلام علیکم جی، کال آ رہا. ہیلو. جی وعلیکم السلام. جی جناب، کیسے ہیں آپ؟
1: ایک بات آپ کی مجھے بھی اچھی لگی، جیسے وزیر کا نصاب فرما رہے تھے، جب آپ نے کہا کہ خاموش نگاہیں، خاموش چہرے، مطلب خوبصورت چہرے، ان کے بارے میں مطلب ججمنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ہے اندر سے کیا.
0: جی جی جی جی جی جی، مشکل ہوتا ہے
1: ایسا ہے، مطلب ججمنٹ نہیں کر سکتا، کبھی نہیں ججمنٹ کر سکتا، مطلب بھائیوں کے لیے ججمنٹ کر سکتا یار.
0: ہاں، جن کے ساتھ زندگی گزر. اچھا اچھا، اس پہ بھی ایک بڑے مزے کا آسپیکٹ ہے سر. بعض اوقات نا، اچھا یہ اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، یہ بھی ایک بڑا پہلو ہے، بڑا مزیدار پہلو آپ نے جو بات کی نا، کہ بھائیوں کو بھی بعض اوقات جج نہیں کر سکتے.
1: یہ میں آپ کو داستان سناتا ہوں.
0: جی سنائیے.
1: آپ اجازت دو، تین بھائی تھے، تین بھائی، دو بھائی امریکہ چلے گئے اور شادی شدہ تھے. ایک بھائی کو کہا کہ تم گھر کا خیال کرو اور ہم آپ کو خرچہ بھیجتے رہیں گے. وہ بھائی کشمیر کے رہنے والے تھے. ابھی میرے پاس بیٹھا ہے تو پھر انہیں چھپ کر دیتا ہے میرے سامنے، کہتا ہے کہ میں نے بھائیوں کے لیے ایسا کیا کہ پہاڑوں میں جا کے، آپ کو پتا ہے کہ بڑے جو راستے ہوتے خطرناک ہوتے، کہتا ہے کہ برف پڑ رہی ہوتی، میں بچے ان کو اٹھانا، قدروں پہ اٹھانا اور ان کو اسکول چھوڑنا، وہاں سے واپس لے کر آنا. تو بچوں کی پرورش میں نے کی. پندرہ سال تک میرے بھائی امریکہ، میرے بہت سارا پیسہ انہوں نے کما لیا. میں نے شکر تھا میرے بچے جوان ہو گئے، ان کے بچے بھی جوان. جب واپس آ گئے تو مجھے یہ علم نہیں تھا کہ میرے بھائی میرے ساتھ ایسا کچھ کر دیں گے. تو جب واپس آئے تو انہوں نے ایک بھائی سیٹل ہو گیا اسلام آباد میں، دوسرا بھائی لاہور میں آ گیا بنگلے گری لے، سڑکے میرے نے شروع کر دیا. تو میری دیدی نے کہا کہ چلو رشتہ مانگتے ایک بھائی سے، چل کے مانگتے ہیں بچے کی بیٹی. جب میں نے جا کے رشتہ مانگا تو بھائی بولنے لگا کہ یار تمہارے پاس کیا ہے، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، تو پھر تو ہم رشتے میں ایک دوسرے سے بن جاتے ہیں، رشتہ کر لیتے ہیں. یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر فضول ہے، آپ کی حیثیت کے برابر کے جو ہے ان کے ساتھ آپ رشتہ بنائے. تو کہتا ہے میرا دل ٹوٹ گیا، میرا اندر سے بھی رضا ہو گیا، باہر سے بھی رضا رضا ہو گیا. تو مجھے وہ صدمہ جو نا کھاتا ہے، جب میں سوچتا ہوں تو میں رونا شروع کر دیتا ہوں. میرے سکے بھائی.
0: اچھا سر، اس میں نا جی جی، آپ کی بات
1: صاحب بتاتا ہوں آپ کو کہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا ہے اندر سے کیا ہے.
0: جی سر، چلے میں اس پہ بات کرتا ہوں. تھینک یو سر، آپ کے پوائنٹ دینے کے لیے بہت شکریہ. اچھا سر، انہوں نے جو کال کی ہے نا ابھی، جو سر میرے ساتھ موجود تھے، جو بھائی صاحب، انہوں نے بہت سارے موضوعات کو چھیڑ دیا، بہت ساری چیزوں کو چھیڑ دیا، بہت سارے ڈاٹس کو چھیڑنا شروع کر دیا. اچھا ہر چیز کو نا آپ کوشش کیا کریں کہ اس کے اس والے اینگل کو بھی دکھا کریں جو آپ کو برا دکھ رہا ہوتا ہے. جیسے آج میں نے آپ کو بتایا نا کہ دنیا میں برائی جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اگر برائی نہیں ہوگی تو اچھائی نہیں ہوگی، یا شاید اچھائی یا شاید دنیا کا نظام نہیں چلے گا، اور اس برائی کو ختم کرنے والے شاید نہیں ہوں گے، یا اس برائی کو ختم کرنے کے بعد یا اس اچھائی کا احساس ہمیں نہیں ہوگا. درد نہیں ہوگا تو سکون کا احساس نہیں ہوگا، یا اگر پریشانی نہیں ہوگی تو جب ہمیں ہمارے حالات اچھے ہوں گے تو ہمیں اس کی راحت کا احساس نہیں ہوگا. सो इसी तरह जब चीज़ें जो है वो बिगड़ती हैं, तो जब वो दुरुस्त होती हैं तो फिर हमें उनकी खूबसूरती का एहसास भी तभी होता है। तो उन्होंने पहले कहा जी कि वो तीन भाइयों में एक भाई ने बाहर चले गए और फिर उन्होंने वहाँ पे बहुत सारा अर्न किया, पीछे वाले भाइयों को भेजते रहे कि आप घर वाला का घर संभालें, चीज़ें करें, और फिर उन्होंने सेटल डाउन यहाँ पे हो गए और बड़े वेल स्टैब्लिश हो गए। और वो बेचारा बाहर परदेश काट के जब वापस आया और फिर उसके बाद फिर उन्होंने आपस में रिश्ता करने की कोशिश की, तो वो रिश्ता ना हुआ तो दिल उनका बड़ा रंजीदा हुआ। पहली बात तो ये है मेरे भाई, सब सुनने वालों को मैं ये कहूँगा कि हम आपस में बहन भाइयों का, आपस में हमारी रिश्तेदारियों का, हम बड़े जज्बाती तौर पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मैंने पहले बात की, जब मालो दौलत की एतबार की बात आती है, स्टेटस की बात आती है, तब हम बहुत ब्रूटल हो जाते हैं। और उस वक्त जब हम ब्रूटल होते हैं तो उस वक्त शायद हम, हमारे जज्बात इतने कनेक्टेड होते हैं कि हम उन जज्बात को ख़त्म नहीं कर पाते। या बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है और हम सब कुछ अपनी फैमिली पर निछावर कर देते हैं, और अपने बच्चे और अपनी बीवी या अपना जो घर बार होता है वो बहुत सफ़र करता है। या आप दुनिया से चले जाते हैं तो वो बाद में भी आपको बदवाएँ देते हैं, आपके बारे में बुरा जानते हैं कि सब कुछ अपने माँ बाप बहन भाइयों को दे के चला गया, हमारे लिए कुछ मत छोड़ा। तो ज़िंदगी जो है ना वो तवाज़ुन का नाम है, बैलेंस लेके चलने का नाम है। माँ बाप का एक हक है, उनको हक दीजिए। बहन भाइयों का एक हक है, उनको हक दीजिए। उनसे मोहब्बत करना कभी मत छोड़िए। लेकिन बीवी बच्चों का भी एक हक है, वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है, उनका भी एहसास कीजिए। और अगर आप बहन भाइयों के साथ हैं तो आप अपना बिज़नेस अलग रखिए। अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, और अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनको सपोर्ट कीजिए और साइकोलॉजिकल सपोर्ट कीजिए। और अगर आप कहीं दुनिया में ऊपर चले जाते हैं तो नीचे वाले बहन भाई का ज़रूर ख्याल रखिए, उससे मोहब्बत ज़रूर कीजिए। लेकिन नीचे वाले बहन भाई से मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो सब कुछ सिर्फ आप पे निछावर करे, क्योंकि रब ने जो उसको दिया है और उसने अपनी ज़िंदगी अगर सेटल की है तो उसने बहुत कुछ कुर्बान किया होगा जो आपने नहीं किया होगा। जो आपने वो वक्त शायद के अच्छाई में, अय्याशी में या सुकून में गुजारा हो, और वो वक्त उसने धूप में और स्ट्रगल में गुजारा हो, तो वो आपका राइट नहीं बनता, वो उसका राइट बनता है। और आप चाहें कि ज़िंदगी आपकी सुकून में पहले भी गुजरे और जब वो कुछ हासिल कर ले रिवॉर्ड तो वो भी आपके साथ वो शेयर करे, तो इस बात की एक्सपेक्टेशन मत रखा करें। आपने अपनी ज़िंदगी की सफ़र आपने तय करना है, वो जो दौड़ है आपने अपनी खुद दौड़नी है, दूसरे बहन भाई ने अपनी दौड़ अलग दौड़नी है। अगर वो आपको सपोर्ट करता है, अगर वो आपके साथ मोहब्बत करता है, आपको कुछ दे देता है, या आपको कहीं किसी जगह पे आपकी सपोर्ट कर रहा है, तो वेल एंड गुड, आप उसके शुक्रगुजार रहिए। लेकिन उससे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि भाई अगर वो आपका भाई है या बहन है तो वो आपको हमेशा के लिए पाले गई। और ऐसा मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि बहुत सारे बहन भाई, एक भाई या एक बहन ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करता है और वो बहुत कुछ कर रहा होता है, और वो ज़िंदगी में कहीं किसी न किसी मकाम पे पहुंच जाता है, क्योंकि ये रब का कानून है कि आप मेहनत करेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे तो आपको मिलेगा ज़रूर, आप इन्जॉय ज़रूर करेंगे लग्जरी को भी। जब वो किसी लग्जरी पे पहुंच जाता है, जो वो बहन भाई जिसने कभी ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं की और वो सुकून करता रहा उस वक्त भी जब वो धूप पे था, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करता था, अपनी सेहत उसने बिगाड़ ली और शायद उसने शादी नहीं की, बीवी बच्चे नहीं किए, या और भी कुछ बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ें ऐसी थी जो उसको वक्त के ऊपर करनी थी वो नहीं की, कुर्बान कर दी। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जब आप कुछ हासिल करते हैं तो उसके लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। जब उसने कुर्बान किया उस वक्त आपने अय्याशियाँ की, और जब आज उसके पास कोई चीज़ आ गई है तो आप उसके साथ बराबर के हिस्सेदार बनने लग गए, ठीक है? तो ये जस्टिस नहीं है, ठीक है? तो इस बात को भी आपको बर्दाश्त करना चाहिए कि आपने उस वक्त मेहनत नहीं की थी। लाइक आपको, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई से भाग रहे होते हैं और नहीं पढ़ते, वो उस वक्त उनको मुश्किल लग रहा होता है, यार होमवर्क कैसे करें, टेस्ट कैसे देना है, यार ये एग्ज़ाम्स देने मुझे बहुत बुरे लगते हैं, स्कूल सुबह उठ के कौन जाएगा भाई, सुबह सुबह इतना भारी बैग लेके कौन जाएगा, टीचर्स की डांट कौन सुनेगा। वो पढ़ाई से भाग जाते हैं बहुत सारे लोग, और फिर ज़िंदगी में जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, 30, 25, 35 में पहुँचते हैं, तो कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं और साथ वाला जो दोस्त जिनके साथ उसी उसका स्कूल फेलो होता है, वो किसी जगह पे किसी बड़ी पोस्ट पे बैठा होता है, उसको देख कहते हैं इधर दीवारे न्यारे हो गए ने, और इसको देखो ना इसकी तो किस्मत चमक गई है। भाई उसने किस्मत चमकाने के लिए वो सर्दी गर्मी बर्दाश्त की थी, वो अपने स्कूल गया था, अपने कॉलेज गया था, उसने इम्तिहान दिए थे, उसने रातों को बैठ के स्टडी की थी, उसने वो मुश्किल वक्त गुजारा था, उसने उस्तादों की डांट खाई थी जो तुमने नहीं की थी। तो जब तुमने वहाँ नहीं किया था, उस वक्त अपने आप को सुकून में डाला था, तो आज तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़िंदगी में आपको किसी न किसी मकाम पे तकलीफ़ ज़रूर बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब वो तकलीफ कौन सी आप बर्दाश्त करते हैं उसकी सिलेक्शन आपके पास है। आप बचपन में तकलीफ बर्दाश्त कर लें, या बड़े होकर तकलीफ बर्दाश्त कर लें, या फिर जाके बुढ़ापे में सारी ज़िंदगी तकलीफ बर्दाश्त कर लें। सो आपने खुद सिलेक्ट करना होता है कि आपने अपने आप को स्ट्रगल में कहाँ डालना है। और याद रखिएगा कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ आसानी से उसको नहीं मिलती, उसने उसकी कीमत अदा करनी होती है, कुछ ना कुछ पे ऑफ करना होता है। आपको दुनिया में जो भी कोई शख्स अगर किसी बड़ी पोस्ट पे दिखाई दे रहा है या किसी बड़ी जगह पे दिखाई दे रहा है, तो उसने कोई ना कोई स्ट्रगल की है, कुछ ना कुछ उसने ऐसा ज़रूर किया है कि उसने कुछ हासिल किया। बगैर स्ट्रगल के, बगैर मेहनत के, रब का उसूल ही नहीं है कि वो आपको दे दे, वो आपको दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसने उसूल बनाया है कि भाई तुम मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, तो मैं तुम्हें दूंगा। फिर आ जाते हैं जी, वो जो भाई साहब ने कहा कि उन्हें रिश्ता नहीं दिया, और उन्होंने कहा जी कि अगर आपके पास स्टेटस है, आपके पास गाड़ी, घर, बंगला, चीज़ें हैं, तो हम आपको रिश्ता देंगे। एक मिनट के लिए सोचिए कि जो उनकी बेटी जिसने घर में पैदा हुई और उसने चले पैदा होते ही गाड़ी देखी, घर में बंगला देखा, नौकर चाकर देखे, अच्छी लग्जोरियस लाइफ देखी, ज़िंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं देखी, और बताइए कि अगर वो किसी ऐसे शख्स के साथ उसकी शादी करा देंगे जिसके पास उसके उसको वो बेसिक नेसेसिटीज़ देने की गुंजाइश नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप क्या समझते हैं सर कि उनका रिश्ता कामयाब रहेगा? उस बच्ची के साथ भी ज़्यादती है और उस शख्स के साथ भी ज़्यादती है जो सारी ज़िंदगी अपनी बीवी की वो लाइफ को पूरा नहीं कर पाएगा और वो दुखी रहेगा। सो मैं समझता हूँ कि आपको वाकई में रिश्ता बराबरी में करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी को कोई लग्जोरियस लाइफ दे दी है एक दफ़ा, अगर एक दफ़ा उसने कोई चीज़ इंजॉय कर ली है और वो उसकी ख्वाहिश से निकल के ज़रूरत में तब्दील हो गई है, और अगर वो ज़रूरियात बन चुकी हैं उसकी लग्जरी, तो फिर उसको वापस अगर आप नीचे लेके आएंगे तो उसको बहुत तकलीफ़ होगी। अगर आप उसने ज़िंदगी में कुछ देखा नहीं है ना, तो फिर अगर आप उसको वहाँ पर रखेंगे तो शायद उसको उतनी तकलीफ़ ना हो जितनी उसको दे के उससे वापस लेने में तकलीफ़ होती है। तो किसी को जन्नत अगर नहीं देखी ना, तो शायद उसको जन्नत की ख्वाहिश हो, लेकिन जन्नत के बगैर वो जिंदा ज़रूर है। लेकिन किसी को जन्नत से निकाल दिया जाए ना एक दफ़ा दिखा के, तो कभी भी इस दुनिया में ना रहे। हम सारे इंसान अगर हमें जन्नत दिखा दी जाए ना एक दफ़ा और जन्नत का मज़ा हम एक दफ़ा चख लें, हम कभी भी इस दुनिया में बाकी ना रहें। बहुत तकलीफ़ होती है यार जब आपके पास कुछ होता है और वो आपसे चला जाता है, कुछ खूबसूरत, कुछ अच्छा, कुछ बहुत अच्छा आपके पास हो और वो आपसे छिन जाए, तो आपको बहुत मुश्किल लगता है। और अगर ऐसा हो कि आपको अपने बड़ों की बात का कोल रखना हो और भाइयों की मोहब्बत में आप नई जनरेशन को क्यों पीस रहे हैं भाई, मैं तो इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि आप अपनी बराबरी में एक तो इश्तर ना करें और दूसरा अपनी मोहब्बतों के चक्कर में। बस बहन भाइयों में बहुत मोहब्बत होती है और फुफ्फों के घर में या मामों के घर में रिश्ता हो जाता है और ज़िंदगियाँ बहुत दफ़ा मैंने बर्बाद होती हुई देखी हैं।

0: ओके जनाब, वेलकम बैक। 1:43 है जी, और 101 इंटरनेशनल आप सुन रहे हैं आज केबी के साथ, और केबी आपके साथ है जी। वक्त बहुत कम रह चुका है, वक्त सिर्फ बाकी है आपके साथ 17 मिनट का, और 17 मिनट के साथ में मैंने आपसे आज कमिटमेंट करी थी कि आपकी कॉल ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लेनी है। सो वक्त आपने भी कम लेना है मेरा, ठीक है ना जी। कॉलर लेते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। जी सर,
1: बस शो तो नहीं सुन रहा, मैंने बोला फोन कर दूं यार, मेरी दो तीन आईडिया यार ब्लॉक कर दी इन्होंने, पता नहीं क्यों।
0: किसने ब्लॉक कर दिए?
1: मैं 101 इस्लामाबाद पे आईडी से मैसेज करता हूं तो मेरी आईडिया ब्लॉक कर रहे हैं यार ये लोग।
0: हां, आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा फिर।
1: मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया यार, जो मैं हकीकत होती है जो वो लिख रहा हूं बस मैं।
0: बस फिर आप हकीकत लिखा करें ना फिर आप। चले ठीक है, फिर आपको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, फिर आपको भी बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा?
1: हाँ
0: जी जी, लाइव है आप। अच्छा
1: अच्छा उस पर कोई भी गौर नहीं कर रहा होता है।
0: आप बस आप पकड़े जाते
1: तो
0: हैं।
1: ये बताया कि फोन के लिए जो बात हो रही होती है जब पूरी दुनिया सुन रही होती है
0: जी,
1: वो सही है या अगर बंदा मैसेज पे करे वो सही है?
0: एक कुरान की आयत है ना, कूलु लिन्नास हुस्ना। अच्छा चलें ठीक है ठीक है, वक्त बहुत कम है, मैं इस वक्त किसी और मौजू पे बात कर रहा हूँ, ठीक है सर, फिर बात करते हैं। लड़ाइयाँ करने आ जाते हैं यार, लड़ाइयाँ ना किया करें यार, अच्छी अच्छी बातें किया करें। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी वालेकुम अस्सलाम, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? सही से नहीं आ रही, कौन बात कर रहा
2: है?
0: हाँ तो अरीबत, आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। चलो फिर अगर हम ये बातें करते रहेंगे ना, आवाज़ नहीं आ रही, आ रही नहीं आ रही, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये वाली बातें करूँ। फटाफट बात करो, निकलती बनो। हाँ हाँ ये तो है वैसे। चलो दैट्स ग्रेट, थैंक यू रीबा, अपना ख्याल रखना बहुत बहुत, ठीक है, बाय बाय।
3: वीरान नसीब दहाल न पूछ, तू शाकिर आप सियाणा है सडा।

0: 051-111-0101 और 051-920-2540। और जी कॉलर है मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
1: सॉरी नजीर, क्या नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कहा क्लियर कर दूं, शायद मुझे रात को नींद ही ना आए, जो पैर रह गया है
0: जी
1: वो वाकई मुझसे गलती हुई है। असल में मैं आपका और गजनफर का प्रोग्राम सुनता हूँ, क्या नहीं क्या उनका हफ्ते को होता है, आपको जुमे आपका जुमे वाले दिन होता है,
0: जी सर,
1: और वो कल हफ्ते वाले दिन परसों नहीं आए, तो मैंने दिल में रखा हुआ था कि उनके पूछूंगा भाई क्यों नहीं आए, तो बस आप
0: चल
1: सामने आ गए।
0: चलें सर, क्या नहीं सर, थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके जनाब, नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, जी वालेकुम अस्सलाम, जी कौन साहिबा हैं, कहां से हैं?
2: मैं अनम खान बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से।
0: जी अनम, बताइए क्या कहना चाहती हैं?
2: जी मैंने अपना फेस रीड करवाना है।
0: अच्छा, आपने फेस रीड करवाना है।
2: जी
0: सो मुझे बताइए आपके, आप अपने चेहरे के किस हिस्से पे बात करना चाहती हैं, लाइक अपनी आंखों के बारे में आप पूछना चाहती हैं, माथे के बारे में, ठोड़ी के बारे में, या चेहरे के किस फीचर के हवाले से आप पूछना चाहेंगी, क्योंकि चेहरे के तो बहुत सारे फीचर, या ओवरऑल पूरे चेहरे के बारे में पूछना चाहती हैं?
2: ओवरऑल फुल फेस के बारे में।
0: ओके सो आप मुझे बताइए कि चेहरे की ना 6 अकसाम होती हैं, आपकी कौन सी किस्म है? आपका जो चेहरा है वो ओवल है, एक अंडे की मानद होता है, एक राउंड है बिल्कुल गोल होता है, कुछ स्क्वेयर होते हैं, कुछ हार्ड फेसेस होते हैं, ठीक है?
2: ओवल है मेरा।
0: ओवल है मतलब कि आप कह सकती हैं कि आपका चेहरा जो है वो बेज़वी है। ओके सो आपका चेहरा ये कहता है कि आप थोड़ा एडेप्टेबल हैं, कि आप चीज़ों को अडेप्ट कर लेती हैं, लाइक आप माहौल में एडजस्ट हो जाती हैं जल्दी, जिस तरह का माहौल होता है वहाँ एडजस्ट हो जाती हैं, आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक इरीटेट नहीं करती हैं, आप जल्दी से मान लेती हैं बात, आपको अगर कोई बात कही जाए तो आप जल्दी मानने वाली हैं, ऐसा है? डिप्लोमेटिक हैं थोड़ी आप, अगर कोई चीज़ मुश्किल से हल हो रही हो, गुस्से से हल हो रही हो, तो आप गुस्से से नहीं करती हैं, आप पेन बर्दाश्त कर लेती हैं, सामने वाली पर्सनैलिटी अगर आपको पसंद नहीं है फिर भी आप उसको थोड़ा बर्दाश्त करती हैं और मौके के ऊपर चोट लगाती हैं, फौरन रिएक्ट नहीं करती हैं आप।
2: नहीं नहीं ये गलत
0: है। अच्छा, आप फौरन रिएक्ट करती हैं
2: जी।
0: फिर आप अडेप्टेबल नहीं हैं, जो पहली बात है ना, जो आपको मैंने बताया कि आप अडेप्टेबल हैं, मुतवाजन हैं, एक्सेप्टेबल हैं, अगर आप एक्सेप्टेबल होते ना तो आप डिप्लोमेटिक बड़े ज़रूर होते हैं, या तो आपको लगता है कि शायद आप डिप्लोमेटिक नहीं हैं, आपको लगता होगा, लेकिन आप होंगी शायद। नहीं आप, तो फिर आप एडेप्टेबल नहीं है, आपको हर चीज जल्दी पसंद नहीं आती, आप दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करती।
2: जी बहुत कम लोगों से मेरी बनती है और बहुत शॉर्ट सर्कल है मेरा।
0: तो फिर आपका जो फेस है ना वो ओवल नहीं होगा, फिर आपका फेस होगा हर्ट
2: कह सकते हैं, लेकिन मेरा जो माथा है ना वो थोड़ा छोटा है।
0: ओके
2: मतलब हार्ट शेप में तो थोड़ा चौड़ा माथा आता है ना,
0: हाँ
2: थोड़ा सा शेप वो कह सकते हैं, लेकिन मैं भी हार्ट में आता हूँ।
0: फिर आपका डायमंड फेस हो सकता है, अगर आपका माथा थोड़ा सा अगर चौड़ा है और आपकी चीक बोन्स थोड़ी सी वाइड हैं और थोड़ी आपकी थोड़ी स्लिम है, लाइक ऐसा है, ठीक है? तो आप फिर आप ना एक मजबूत इरादा रखने वाली हैं, जो आप इरादा कर लेती हैं, आप जो ठान लेती हैं फिर आप वैसा ही करती हैं, अपनी राह खुद बनाती हैं, किसी के ऊपर आप डिपेंड नहीं करती, हार्ड वर्कर हैं आप, ऐसा है? आप हार्ड वर्कर होंगी, अपनी राह खुद बनाती होंगी और आप मजबूत इरादा रखती होंगी, क्योंकि कोई चीज़ आपने अगर शुरू की है ना तो आप कहती हैं यार इसको ख़त्म, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप वहाँ पर छोड़ देंगी, आप फिर उसके ऊपर वर्कआउट करती रहती हैं। अच्छा, तो मज़ीद कुछ जानना है आपने? चलें ठीक है जी, बताने के लिए काफी देते हैं, आप कुछ बताना चाहें तो आप बता सकती हैं। अच्छा चलें, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका नम फॉर कॉलिंग, थैंक यू, बाय बाय।

0: ओके जी, वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, कॉलर है मेरे साथ जी, फटाफट कहिएगा क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।
0: क्या हाल है हमीद गुल साहब?
1: आप ठीक हैं? खैरियत से?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ।
1: अभी तक आप चेहरा शनासी में डटे हुए हैं।
0: डटा हुआ सही, खूब टिका के। जी सर, थैंक यू।
1: बड़ी मेहरबानी की। क्या कहूँ दीदाए तर, ये तो मेरा चेहरा है।
0: वाह,
1: क्या कहूँ दीदाए तर,
0: ये तो मेरा चेहरा है।
1: संग कट जाते हैं बारिश की जहां धार गिरे।
0: आए हाय हाय, संग कट जाते हैं बारिश की जहां धार गिरे। अरे वाह वाह वाह वाह वाह, कमाल सर कमाल, बहुत खूब बहुत खूब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हमीद गुल साहब थे मेरे सर, नेक्स्ट कॉलर हैं जी। हेलो जी। जी वालेकुम सलाम।
2: आयशा बोल रही हूँ।
0: जी आयशा। थैंक यू। जरा आप क्लियरली, आपकी आवाज नहीं आ रही आयशा मुझे। बस मैंने यही कहना था कि आपका शो बहुत अच्छा है, मैं सुन रही हूँ आपको। थैंक यू आयशा, बहुत शुक्रिया यार। अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब, कौन है, कहाँ से?
2: शुक्र है, कॉल लगी मेरी, काफी देर से कॉल तो लगती थी, लेकिन आप
0: आप क्या आप क्या मैंने कोई दरांति रखी हुई आपकी कॉल काट देता था?
2: नहीं नहीं
0: हाँ,
2: जब कॉल लगती थी तो कॉल उठाते नहीं थे आप।
0: अच्छा,
2: जब जब कॉल उठाने का टाइम होता तब कॉल लगती नहीं।
0: हाँ, ये तो बड़े मसाइल है ना, बस बस ये तो फिर प्रोग्राम में मसाइल होते हैं। अच्छा,
2: सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
0: नाम तो बताया नहीं आपने। नीलम,
2: इरम,
0: इरम बात करिए। अच्छा ओके जी ओके, इरम चाय वाली इरम है ना।
2: और सुनाए भाई, आप कैसे
0: हैं? मैं बिल्कुल अच्छा।
2: आज तो फिर मेरा भाई बहुत संजीदा हो।
0: तो अच्छा, आपको संजीदा प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता?
2: अच्छे लगते, तभी तो कहा ना, पहले मैंने सोचा कि खामोशी से सुनते हैं।
0: अच्छा,
2: तो कॉल नहीं करेंगे, लेकिन जब मुख्तलिफ बात हुई ना, जब आपने अच्छी अच्छी बातें टॉपिक जो रखे, तो फिर मैंने सोचा चलो कॉल करनी चाहिए।
0: अच्छा, तो वैसे
2: टॉपिक पे हम बात संजीदा जो कह रहे थे, मतलब पर अपनी पसंद जबरदस्ती थोपना, ये नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी वो कहते हैं ना कि घर में कोई चीज खाने को नहीं पसंद होती, कोई बना लेता है, तो मुझे दो तीन कुछ ऐसे डिशेज हैं जो मुझे पसंद नहीं है। तो पहले मैंने ये कहा घर वालों को कहना कि यार मुझे ये नहीं पसंद, तो आप क्यों बनाते? तो जब वो बना रहे थे तो मैंने आज उसके बाद मैंने कहना छोड़ दिया। वो भी समझ गए, वो बना तो लेते, लेकिन मेरा भी ख्याल रखते कि अब इसने तो खाना नहीं, तो इसके लिए कुछ अलग से होना चाहिए।
0: चलो ठीक है रम, ख्याल रखो अपना।
2: बाकी मुझे कहना ये, पिछली बार अनिला पी आई थी और आप तो आए थे, और अब बाकी आपकी सब बातों को नजरबंद रख के मुझे ना एक मेरे दिमाग में शायरी आई, अगर आपकी गलत हो।
0: फटाफट रम, फटाफट, चाय आज मैंने नहीं बनवाई हुई, आज पानी रखा हुआ पास।
2: और भाई मुझे ये भी कहना था, कभी एक मिनट से ऊपर मेरी तो कॉल लगी नहीं
0: यार। दो मिनट 17 सेकंड, दो मिनट 20 सेकंड, दो मिनट 21 सेकंड, दो मिनट 22 सेकंड, 23 सेकंड, 24 सेकंड, बताओ फटाफट।
2: सॉरी सॉरी सॉरी भाई, सुने सुने सुने,
0: हाँ
2: शायरी सुने,
0: सुनाओ।
2: वो कहता पंजाबी में,
0: हाँ
2: सुन, कहता कि मैं सबसे बड़ा, मेरी दुनिया जियारत कर दी, अकल पेंदी मैं सब तो वड्डी, मैं विच कचहरी जा लड़दी, ते दौलत पेंदी मैं सब तो वड्डी, मेरा खलकत पानी पर दी, तकदीर कहंदी कि किन्ने झूठे, मैं जो जो चावा सो कर दी।
0: वाओ, थैंक यू इरम, बहुत शुक्रिया। छेती भूलया करो, छेती बंद गया करो।

ओके जनाब, वक्त रुखसत हुआ चाहता है और वक्त होता है जाने के लिए, वक्त होता है ख़त्म होने के लिए, और वक्त कभी इंतज़ार नहीं करता, वक्त चल पड़ता है और हमें वक्त के साथ चलना पड़ता है। तो आज के प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। दौरान गुफ्तगु, दौरान बातचीत कोई गलती, कोई सहव सरजद हुआ हो तो माफ़ी चाहता हूँ। इंसान हूँ, ख़ताकार हूँ, ख़ताओं का पुतला हूँ, ख़ताएँ सरजद हो जाती हैं, माफ़ कीजिएगा। रब की सुन्नत है माफ़ करना, आप भी माफ़ कीजिएगा। किसी के कान पे, किसी के दिल पे कोई बात भारी गुजरी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, अगर सांसों ने वफ़ा की, तो आपसे मुलाकात होगी अगले जुम्मे को, आने वाले जुम्मे को, और फिर उससे आने वाले पीर को। और अगर आप प्रोग्राम में कोई सजेशन देना चाहते हैं, प्रोग्राम में कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं, सो प्रोग्राम में कोई चीज़ इंक्लूड करवाना चाहते हैं, सो डू लेट मी नो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर है kb.baig, आप इंस्टाग्राम पे मुझे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे कोई भी बात कह सकते हैं, कोई मौजू सजेस्ट कर सकते हैं। किसी बात पे आपने दौरान गुफ्तगू इख्तलाफ़ किया है तो उसके ऊपर भी आप मुझे, अगर आप कॉल के ऊपर या ऑन एयर नहीं बताना चाहते तो वहाँ ज़रूर बताइएगा, और किसी मौजू को छेड़ना चाहते हैं तो ज़रूर छेड़िएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द हर जी रूह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो आपसे मुलाकात होगी। KB साइनिंग आउट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

ज्यादा सदे दिल भर माही मैं तो यार बुलाया जाता नहीं सिर रख के यार दे कदमा

ज्यादा से दिल भर माही मैथों यार बुलाया जाता नहीं सिर रख के यार दे कदमा विच सिर फेर

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो।
1: मेरी जिंदगी है तू,
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।